0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
2: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।

0: This is Like a Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
0: साफो ट्रेवल, at all protected.
2: We're finally going home for the wedding.
3: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
2: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
3: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
2: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
3: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
2: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
4: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

गला, मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं, ले तेरे पाँव फरूं, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू, थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।

उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआइए हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कहे ना कोए गावे को तान हुवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाइयां चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी लै फिर दे गावे

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवे।

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन का विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी नाव

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

आहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लो लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापै जाए

0: today. Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
1: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 to 1 PM।

0: जायका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी
3: सामड़े काम कर मेडिकल देले अने नाकता
4: चाहिए एटले
2: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक
5: तू गांडो छे आगे वालो ब्रेक मारे तो पाछळ वालो ब्रेक मारे छे यार तारी मारी
2: दोस्ती स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी मित्रता इन सिनेमाज नाउ यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया
6: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
7: लंदन तैयार हो जाओ आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026
8: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
7: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न
8: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो गरबा खेलो
7: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी
8: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर व्हाइट हार्ट रोड लंदन SE18 1DG

0: टिकट्स बुक करो segalondon.co.uk।
1: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।
2: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 Our line.
3: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
4: Add देसी तड़का to your routine with जयमिन फूड के variety of snacks, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
5: My friend, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है।
6: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
7: Your brain now, play the game.
8: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
9: Like a Radio Network. Proud hospitality partner.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: दिस इज लाइका गोल्ड ग्रेटर लंदन, नाउ ऑल्सो अवेलेबल इन ग्रेटर मैनचेस्टर.

0: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
1: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।

0: 773-633 to book your dream holiday. ये है Like a Gold TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com. व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
0: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
1: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
0: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट. कॉल 01923227274. Book your table today.

जाते जाते ओ जरा जाते जाते जरा मुड़ के तो देख कुड़िए जाते जाते ओ जरा जाते।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल travelhub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: travelhub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
3: पितृपक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से 1 से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर 22 पामस्टन रोड हैरो HA37RR अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678

0: Set Co Food Containers, total satisfaction.
1: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danube 11, 11. Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11,
2: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties.
5: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी
6: सांभळ एक काम कर मेडिकल देले अने नाखता जाइए
7: એટલે
5: सोल सूत्र प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक
8: तू गांडो छे आगे वाला ब्रेक मारे तो पाछळ वाला ब्रेक मारे ने यार
5: स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी मित्रता इन सिनेमाज नाउ यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया
9: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners like our radio network.

0: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
1: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
0: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
1: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
0: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
1: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: वेरी गुड मॉर्निंग। आज के मौसम की बात करें, टुडे विल सी क्लाउड टू स्टार्ट विद अ फ्यू स्पेल्स ऑफ रेन एंड ग्रेजुअली इट विल ईजिंग थ्रू द डे लेवलिंग प्लेंटी ऑफ सनशाइन बिकमिंग ब्रिजी। वो टेम्परेचर आज ऊंचा जा रहा है, 26 डिग्री लंदन में और मिडलैंड में 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
1: फॉर स्पेशल रेट्स टू इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, मालदीव्स, थाईलैंड, यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, कॉल साउथ ऑल ट्रैवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0208 574 8410।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: लाइका रेडियो नेटवर्क पर ये लाइका गोल्ड रेडियो की सर्विसेज और लाइका रेडियो मिडलैंड। वैसे भाई आप विभिन्न माध्यमों से दुनिया भर में हमें सुन पा रहे हैं। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश टाइम, टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 5:15 हुए हैं, सुबह क्षमा कीजिए 10:05 हुए हैं। ये भाई कहाँ नजर जा रही है, कहाँ का टाइम बता रही है। वैसे एक बात है भाई, कहीं ना कहीं तो वो समय भी हुआ जो मुझसे अभी मुंह से बोला गया। यानी दुनिया में हर देश की घड़ियों में वही अलग अलग समय होता है और कहीं ना कहीं वो समय भी है जो बोला गया और हमारी पहुंच वहां तक है, यकीन मानिए। आज मंगलवार सितंबर महीने की 29 तारीख, साल का 272वां दिन, अभी 93 दिन बाकी हैं इस वर्ष के। लेकिन देखिए सब खाली होता जा रहा है खजाना, एक एक दिन ऐसे बीत रहा है जैसे जीवन बीतता है, सांसें खर्च होती हैं, वक्त गुजरता है। वैसे भाई आज 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे भी कहते हैं, विश्व हृदय दिवस, आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल तो कार्यक्रम शुरू करें शायरी से। शायरी में है चाहत और चाहत मोहब्बत, कि मैं तुझे दिल में बिठाना चाहता हूँ, अपना उजड़ा घर बसाना चाहता हूँ। तेरे होठों पर खिली हैं जब से कलियां, मैं भी तब से मुस्कुराना चाहता हूँ।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
0: तेरी आदत रूठने की रूठ जाओ, मैं तो रूठों को मनाना चाहता हूँ। मेरे दिल की बात अगर तुम पूछते हो तो साहब आपसे मैं, हाँ आपसे मैं क्या, आपसे मैं लंच खाना चाहता हूँ अगर मिल जाए।

मैं तुम्हें दिल में बिठाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दिल में बिठाना चाहता हूँ, अपना उजड़ा घर बसाना चाहता हूँ। तेरे होठों पर खिली हैं जब से कलियां, मैं भी तब से मुस्कुराना चाहता हूँ। बिजलियों का डर न हो, सयाद का डर, उस जगह एक आशियाना चाहता हूँ। तेरी तकरीरों के बदले मुझको वाइज जामे मैं पीना पिलाना चाहता हूँ। मैं चमन हूँ, मेरी दुनिया फूल कलियां, मैं चमन हूँ, मेरी दुनिया फूल कलियां, बाग दुनिया को बनाना चाहता हूँ।

0: Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: मैं SBI का रेट तो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अपनी परेशानी आपके साथ साझी करना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि गोरी तेरे अंग अंग में वो रंग के क्या भरे हुए हैं, कल से परसों से क्यों नहीं भाई, आज से क्यों नहीं, कल से। अरे भाई शर्मा जी, ये कल से होते हैं, कलश जो होता है ना, एक बड़ा बर्तन होता है, वो भरे हुए हैं आपके नूर के, रंग के, खूबसूरती के। समझे क्या? कुछ नहीं समझते। जी लीजिए साहब, SBI UK, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK, याद दिला रहे हैं, अगर आप पैसे भारत भिजवाना चाहते हैं तो हम आपको आज का रेट बताते हैं। टुडे स्टेट बैंक इज गिविंग 126.6 रुपीज, इंडियन रुपीज 126 रुपए 60 पैसे का रेट चल रहा है। ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। Conditions lagu.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai
3: Like a Gold.
1: गोल्डन गीतों का खजाना और गोल्डन बातों का भी भाई। वैसे याद दिला दूं, एक खूबसूरत महिला को हमने, भाई ये कॉलेज के ज़माने की बात है, देखिए वैसे मैं शरीफ आदमी हूँ, आप मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख सकते हैं, बता दूँ, लेकिन भाई क्या कहते हैं उसे कि आँख हम पर जो लाल करते हैं, हम उनसे ये सवाल करते हैं कि भाई नौजवानी हो और शरारत ना हो, आप भी कमाल करते हैं, कमाल करते हैं। हुआ क्या, हमने उनसे ये कहा, देखिए मैडम आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन एक बात बता दें आपको, इस दुनिया में एक दिल ऐसा भी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है।
4: What?
1: नहीं चौंकिए मत, मैं सच कह रहा हूँ आपको, इस दुनिया में एक दिल ऐसा है जो सिर्फ आपके लिए धड़कता है।
4: किसका?
1: आपका और किसका मैडम, आपका। आपका दिल आपके लिए धड़कता है भाई, किसी और के लिए क्यों धड़केगा, लोग ऐसे ही कहा बना देते हैं शायरी। आज विश्व हृदय दिवस है, भूलिएगा नहीं, आपका दिल जो आपके सीने में धड़कता है वो सिर्फ आपके लिए, आपका बिना तनख्वाह का नौकर है, 2400 घंटे साठों दिन बिना रुके धड़कता है, इसका ख्याल रखिए, दिल का ख्याल रखना, इसको संभाल रखना। आगे चलिए शर्मा जी।
5: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
6: London, get ready for an unforgettable night.
7: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
6: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
7: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
6: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
7: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
6: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.

0: Co food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months, featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
5: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 अक्टूबर सुधी, रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी. कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा. वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 2, साउथ राइस्लिप, HA40JS. रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगों में जरूर जोड़ाओ. बधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 0777-287-509.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
7: गारंटेड.
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल,
7: फोन 0208574-8410.
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
8: No, sorry, mate.
9: No, we don't have that part.
8: Have you tried down the road?
10: We can get it in, but it won't be for a few days.
9: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
11: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
12: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
11: Jaimin Foods desi cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
13: Sonatours.co.uk special offer, holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
14: Jab saamne tum aa jaate ho, kya jaane kya?
15: Aapka naya station, Laika Radio Ghazals, bahut jald.
16: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
18: और साहब, ये गीत सुनवाने से पहले एक महान हास्य अभिनेता का जन्मदिन है भाई, वो जिक्र करना जरूरी है. कौन मना रहे हैं आज अपना जन्मदिन? भाई वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन साहब क्या कॉमेडी करते थे, कॉमेडी किंग कहते थे उन्हें. एक ज़माना होता है हर कलाकार का, कभी जॉनी वॉकर होते थे भाई, फिर महमूद साहब, कभी भाई वो अपने एक के बाद एक आते रहे, ऐसे राजपाल यादव तक, जॉनी लीवर, असरानी, ये सब का अपना अपना एक दौर रहा है. लेकिन आज हम महमूद साहब की बात करते हैं. 29 सितंबर यानी आज के दिन 1932 में उनका जन्म हुआ था. और साहब जन्म था एक हास्य कलाकार. 23 जुलाई 2004 में उनका इंतकाल भी हो गया, लेकिन जितने दिन वो जिए भाई, लोगों को हंसाते रहे. किसी भी दौर में, किसी भी स्थिति में उन्होंने लोगों को हंसाना नहीं छोड़ा. अब भाई उनको याद करते मुझे याद आया अपना भी एक जमाना जब रोहतक की सड़कों पर मैं कभी रिक्शा चलाया करता था स्टूडेंट लाइफ में। और साहब वो दौर महमूद साहब को ऐसे देखा, एक सवारी आई, पूछा कि मेडिकल ले चलो, मेडिकल कॉलेज ले चलोगे? रिक्शा वाले ने कहा हाँ हाँ बैठिए, कौन सी राइड चाहिए? कौन सी राइड मतलब? देखिए साहब एक 5 रुपए वाली, एक 3 रुपए वाली, एक 1 रुपए वाली है। भाई ये कैसे, 5, 3, 1 वाली में क्या फ़र्क है? बोले 5 रुपए वाली राइड लेंगे तो अब मैं रिक्शा पे कपड़ा मारूंगा, साफ करूंगा, धीरे धीरे चलाऊंगा, आराम से, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आपका सामान उतारूंगा, चढ़ाऊंगा, रखूंगा, सब चीज़ें देखभाल करके अच्छी तरह से, फर्स्ट क्लास सर्विस। और 3 रुपए वाली, 3 रुपए वाली में ना कपड़ा मारूंगा, ना सफाई करूँगा, ना आपका सामान में कोई हेल्प करूंगा, और रिक्शा तेज चलाऊंगा, सिग्नल बर्नल तोड़ के निकल जाऊंगा। और ये 1 रुपए वाली कौन सी है भैया? देखिए साहब 1 रुपए वाली रिक्शा की सवारी ऐसे है कि रिक्शा आप चलाएंगे, मैं पीछे बैठूंगा। रिक्शा आप चलाएंगे, मैं बैठूंगा। 1 रुपए वाली राइड। एक बार मैंने खुद रिक्शा किराए पर मतलब सवारी के लिए लिया, भाई मैं यहाँ से गया था और रिक्शा वाला बेचारा बुजुर्ग था, मेरी पत्नी भी साथ थी, थोड़ी दूरी जाना था। मैंने कहा बैठ के देखते हैं आज, ड्राइवर को कहा तुम गाड़ी लेके चलो, हम आते हैं रिक्शा पे। अरे साहब रिक्शा पे बैठे, थोड़ी दूर चलने पर देखा बूढ़े को पसीना आ गया है। मैंने कहा अंकल आप पीछे बैठो, रिक्शा मैं चलाता हूँ।

0: मजा आया। बरसों बाद रिक्शा चला के मजा आया। वो पुराने अनुभव, वो सारे दिन, प्यारे दिन, बड़े न्यारे दिन।
1: जय, अरे सामने क्या देख रहे हैं, उन्हें पीछे से पा।

0: रिक्शा वाले को भी देखो भाई, रिक्शा वाले को भी सुनो भाई, महमूद की आवाज। वैसे महमूद आपको बता दें गायक कलाकार भी थे, यहाँ तो किशोर दा गा रहे हैं, महमूद की आवाज में सिर्फ संवाद है, डायलॉग्स हैं, लेकिन महमूद की आवाज में कुछ गीत भी हैं और आज कोशिश करेंगे प्रोग्राम में शामिल करने की, वरना कल बुधवार है, हंसाने वाला दिन भाई। महमूद साहब ने तो गीत भी कॉमेडी के गाए हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे भी आए हैं उनके कंठ से जिन्होंने लोग रुलाए हैं। खैर साहब, आगे बढ़ते हैं, खबरों का वक्त हुआ जाता है। प्रधानमंत्री आज वो लेबर कॉन्फ्रेंस में अपनी स्पीच डिलीवर करने वाले हैं, बहुत सारे सवालों का सामना है, देखते हैं क्या कुछ कहेंगे वो अपनी स्पीच में। और भाई एक वो जो एयरबेस के पास व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे उन्हें पुलिस जमानत पर छोड़ दिया गया है, लोग सवाल उठा रहे हैं सिक्योरिटी के विषय में भी। और भाई एक ये कि होम सेक्रेटरी शबाना महमूद जो हैं वो अब रास्ता खोल रही हैं, कहते हैं यहाँ पर आने का बोट के रास्ते या किसी भी रास्ते से जो फिलिस्तीन की के लोग हैं या फिर अफ़गानिस्तान की महिलाएं या लड़कियां हैं वो भाई एंटर कर सकेंगी कानूनन तौर पे। सवाल सब पे बनते हैं, पर लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स वी हैव इन द न्यूज़ टुडे।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like gold.
0: News. Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। अब भी अभी एक खबर आ रही है कि म्यांमार के रखाइन में नागरिकों पर कुछ हवाई हमलों का समाचार है, 49 लोगों के मारे जाने की खबर है। म्यांमार के रखाइन राज्य के क्याओक्ताव शहर में कल 28 सितंबर को हुए एक हवाई हमले में, खबर अभी आ रही है लेकिन कल यह हमला हुआ है, मरने वालों की तादाद बढ़कर 49 हो गई है। अराकान आर्मी के मुताबिक हमले में करीब 60 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनमें 22 की हालत सीरियस बताई जा रही है। लोकल सोर्सेज का दावा है कि मलबे से डेड बॉडीज निकाले जाने का काम अभी तक चल रहा है और मृतकों की संख्या, मरने वालों की तादाद 58 तक पहुंच सकती है। यह घटना हाल के महीनों में रखाइन राज्य में नागरिकों पर सबसे घातक अटैक माना जा रहा है। अमेरिका में विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक व्यवस्था को लेकर के एक वार्निंग दी है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के एक प्रोग्राम में एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जारी जंग, आर्थिक दबाव और व्यापारिक रिश्तों के बढ़ते पॉलिटिकल इस्तेमाल ने वैश्विक भू राजनीति, पूरे वर्ल्ड लेवल पर भू राजनीतिक परिदृश्य को अस्थिर कर दिया है, अनस्टेबल कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में देश आपस में जुड़े होने के बावजूद इन रिश्तों का इस्तेमाल स्ट्रेटेजी दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्रेशर। जयशंकर ने यूक्रेन और अन्य क्षेत्रों में जारी संघर्षों, पश्चिम एशिया की अनस्टेबिलिटी और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में वायलेंस का जिक्र करते हुए कहा कि इससे डेवलपिंग कंट्रीज पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के संभल वायलेंस मामले में मुल्ला अफरोज को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत की गई डिटेंशन को रद्द कर दिया है। साथ ही इस कार्रवाई को गैर कानूनी मानते हुए राज्य सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। यूपी पुलिस ने संभल हिंसा के मामले में मुल्ला अफरोज को मास्टरमाइंड बताया था। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई वायलेंस, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, उसमें इन्हें गिरफ्तार किया गया था और जिम्मेदार बताया गया था। कोर्ट ने फैसला बदल दिया और यूपी सरकार पर जुर्माना भी लगा दिया। जापान में आयोजित एशियन गेम्स में भारत की नीरू ढांडा ने विमेंस ट्रैप शूटिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसके साथ ही वो एशियाई खेलों में महिला ट्रैप कंपटीशन में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई है। कहाँ की है भाई? हरियाणा की। यस, हरियाणा की 26 साल की नीरू ने फाइनल में 28 का स्कोर बनाकर नया एशियाई खेल रिकॉर्ड कायम किया है। इंटरनेशनल खबरों में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी एसआर ग्रुप अपनी सहायक कंपनी मेसाबी मेटालिक्स के जरिए अमेरिका के आयोवा राज्य में 18 अरब डॉलर की लागत से देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाएगा। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा स्टील प्लांट होगा जिसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेबिलिटी 1 करोड़ टन स्टील होगी। मेसाबी मेटालिक्स के चेयरमैन रेवंत रुबैया ने कहा है कि ये इन्वेस्टमेंट अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मोदी सरकार के एक फॉर्मर मिनिस्टर आर के सिंह ने एसआईआर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घेरा है। उन्होंने एक लंबी पोस्ट लिखी है और उसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन की कार्य प्रणाली पर काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने ईरान को पाबंदियों में राहत देने की खबर को झूठा बताया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को प्रतिबंधों में राहत और फ्रीज की गई रकम तक पहुंचने देने की पेशकश किए जाने से जुड़े एक्सियोस की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान को कुछ भी ऑफर नहीं किया गया है और ये सारी रिपोर्ट्स गलत हैं और ट्रंप ने एक्सियोस की रिपोर्ट को झूठा बताते हुए उसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। एशियन गेम्स के 11वें दिन भारत की अच्छी शुरुआत हुई है। महिला ट्रैप शूटिंग में टीम ने सिल्वर भी जीता है। जापान के आइची नगोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 11वें दिन भारत की शुरुआत अच्छी मानी जा रही है। एशियन गेम्स में अभी तक भारत 45 मेडल जीत चुका है और भारत ने 4 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कल सोमवार को यमुना किनारे स्थित बेला स्टेट बस्ती में रहने वाले उन लोगों से मुलाकात की जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। राहुल गांधी ने बताया कि इस बस्ती में रहने वाले 728 लोगों में से एसआईआर के बाद 727 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। सिर्फ एक शख्स का नाम लिस्ट में बचा है। सिक्योरिटी रीजंस के चलते ओपन एआई लॉन्च नहीं करेगा चैट जीपीटी। ये एक नया मॉडल लॉन्च करने वाले थे, फिलहाल उस पर रोक लगा ली है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने आज इस बात की पुष्टि की है कि वो नेक्स्ट जेन के एआई मॉडल जीपीटी 6.1 एस्ट्रा को फिलहाल जारी नहीं करेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी
2: सामने काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए
3: नाकता चाहिए એટલે
1: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक
4: तू का अंडो छे आगे वाला ब्रेक मारे तो पाछळ वाला ब्रेक मारे ने यार
1: तारी मारी दोस्ती स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी मित्रता इन सिनेमाज नाउ यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
2: Two businesses.
3: Same town.
2: Same service.
3: One appears on page one of Google.
2: The other doesn't.
3: Guess which one gets the customer?
2: The truth is brutal.
3: The first page of Google gets the business.
2: Everyone else gets what's left.
3: So here's the real question.
2: When your customers search for what you sell, do they find you?
3: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
2: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.

0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो मिडलैंड्स और हमारी दूसरी सर्विसेज भाई जिन पर आप हमारे कार्यक्रमों को दुनिया भर में सुनते हैं। ब्रिटिश घड़ियों में इस समय 11:05 हुआ चाहते हैं और ये समय मनोरंजन प्रोग्राम में चिंतन के लिए तय है। चिंतन, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और इसके लिए भाई हमें आलेख भेजा है बर्मिंघम से प्रोफेसर पवन बुधवार ने। प्रोफेसर पवन बुधवार कहते हैं, एक बहुत ही गंभीर विषय मैं आपको भेज रहा हूं, आप चिंतन में शामिल कीजिएगा। बच्चे बचपन में मां की गोद में बैठने के लिए आपस में भाई बहन झगड़ा करते हैं, मेरी मां मेरी मां। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को भूल जाते हैं, फिर लड़ाई होती है तो इस बात पे तेरी मां नहीं तेरी मां। कहते हमारे एक दोस्त थे, उनका फोन देर से बज रहा था और वो अपने काम में बिजी, मैं उनके पास बैठा था। मैंने कहा भाई फोन उठा लो, किसी का जरूरी हो सकता है। कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने देख लिया है पापा का फोन है, बार बार करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, नहीं उठाऊंगा, थक करके फिर बंद चुप हो जाएंगे। मैंने समझाया, जानते हो ये जो हमारे माता पिता है ना, जब एक उम्र हो जाती है तो ये हमारे बच्चे बन जाते हैं। जैसे किसी जमाने में कभी हम इनके बच्चे थे और अब जब उम्र बढ़ती है तो वो हमारे बच्चे बन जाते हैं। धीरे चलते हैं, धीरे बोलते हैं, अटकते हैं, एक ही बात को बार बार कहते हैं, हम कभी कभी चिढ़ जाते हैं, परेशान करते हैं, हमारी ज्यादा कुछ ओवर फिकर करते हैं। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं, उन्हें बताना पड़ता है कि हम बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो खुद बच्चों जैसी बातें करते हैं। फोन बज रहा था और वो मुझे समझा रहे थे, मतलब मुझे बता रहे थे और मैं उन्हें समझा रहा था, देखो मेरी बात मानो, फोन उठा लो। वो बेचैन हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उठा लो वरना एक दिन ये घंटी बंद हो जाएगी फोन की, तुम इंतजार करोगे कॉल का, कॉल नहीं आएगी। वो सीरियस हो गया, फोन की तरफ मुड़ा तो सचमुच फोन बंद हो गया। मैंने कहा वापस करो, पापा से पूछो किस लिए फोन कर रहे थे बार बार। अब उसने फोन मिलाया तो उधर फोन नहीं उठाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने फिर मिलाया, फिर भी किसी ने फोन नहीं उठाया। मेरी और उसकी दोनों की घबराहट बढ़ गई। मैंने कहा शायद नाराज हो गए हैं, कई बार फोन कर चुके थे तुम फोन नहीं उठा रहे थे। कहा ना, ये हमारे माता पिता हमारे बच्चे बन जाते हैं, इन्हें मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, वो अटेंशन चाहते हैं। घबरा रहे हो, जाना चाहती हो? हाँ, दिल करता है पापा के पास जाऊं। बचपन में वो हमारा कितना ध्यान रखते थे, हम उन्हें कितना परेशान करते थे, और आज इसीलिए कहता हूं इससे पहले कि ये घंटी बजनी हमेशा के लिए बंद हो जाए, उनका फोन उठाइए, उनसे बात कीजिए, मुलाकात कीजिए, हालचाल पूछिए, उनका खाना खाया कि नहीं, कुछ पिया कि नहीं, पूछते रहिए, वो बात करना चाहते हैं आपसे, मुलाकात करना चाहते हैं आपसे, देखना चाहते हैं आपको, मैं देख रहा था मेरे दोस्त की आंखें भीग गई थी।
1: जब तक से है
0: वो निकल पड़ा था छुट्टी लेकर अपने माता पिता से मिलने के लिए।

0: प्रोफेसर पवन बुधवार जी बर्मिंघम में और उनकी पत्नी लक्ष्मी बुधवार कहते हैं कि लोग उनके जाने के बाद उनका श्राद्ध करते हैं। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं श्रद्धा से, और जो काम श्रद्धा से किया जाता है वही श्राद्ध बनता है। दिखावे के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, माता पिता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, श्राद्ध। और साहब हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो चिंतन सुन करके इमोशनल हो गए हैं, कहते हैं सप्ताह भर हंसाते हो और चिंतन में रुला देते हो। उल्लास टोरंटो से आपका मैसेज मिल गया है, कहते हैं दिल को छू गया आज का चिंतन पंडित जी। सटन में हमारे भाई विजय, थैंक यू, आपके संदेश मिल गए हैं। लव टू डेज चिंतन अबाउट आवर पेरेंट्स एंड द ब्यूटीफुल सॉन्ग आफ्टर दैट। कीर्ति जय हो, जीती रहो, गॉड ब्लेस यू। वत्सला जी याद दिला रही है पितृपक्ष चल रहा है। हाँ जी मथारू साहब, परविंदर मथारू कहते हैं व्हाट एन इंस्पायरिंग चिंतन, वी हैव एक्सपीरियंस्ड दिस विद आवर पेरेंट्स, मिस करते हैं उनके जाने के बाद, रोते काश मैंने ऐसा किया होता अपने माता पिता के लिए, काश थोड़ा समय निकाल के मैं उन्हें घुमा के लाता, उनकी पसंद की चीज उन्हें खिलाता, उनकी बातें सुनता। मैंने एक गीत लिखा भाई माता पिता पर, हमारे मित्र हैं सिदानी परिवार विपुल भाई, उनके पिताश्री के लिए लिखा था, पहचान ले यही है परमात्मा की सेवा, कर ले पिता की सेवा, कर ले तू मां की सेवा, श्रवण जो बन सके ना तो कंस भी ना बनना, दुख बांट ना सके तो दुख बैठ करके सुनना। रवि काम आएगी तेरी मीठी जुबां की सेवा, कर ले पिता की सेवा, कर ले तू मां की सेवा। आज का चिंतन, आज का विचार भाई निर्मला जी, जगदीश जी और हरविंदर जी, आप सबके संदेश मिल रहे, कहते हैं ब्रिलियंट। नीला चौधरी जी, नीला जी तो हमारी परिपक्व प्रशंसक और भाई श्रोता हैं। रानी स्लाव में जैस्मीन जी, थैंक यू। हरीश रोडा भाई, अनिल जी, कहते हैं मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा आज बुधवार है, जब आप हंसाने लगे, भाई वो महमूद जी का जन्मदिन है इसलिए थोड़ा सा जिक्र करना पड़ा, आज वैसे मंगलवार है पर हम तो हर दिन को बुधवार बनाना चाहते हैं, हर दिन आपको हंसाना चाहते हैं, पर चिंतन में कभी कभी भाई ये गंभीर विषय आ जाते हैं, जरूरी है। भरत गंगाराम जी, हेतल सोलंकी, बैसन साहब, थैंक यू वेरी मच। अर्जुन जी, राजकुमार, मीनल त्रिवेदी, आप सबका भाई बहुत बहुत धन्यवाद दोहराते हुए, और खास शुक्रिया डॉक्टर पवन बुधवार और लक्ष्मी बुधवार को पहुंचाते हुए बर्मिंघम में आज का चिंतन समेटते हैं।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK, yani State Bank of India UK, giving 126.6 Indian rupees for £1. You can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
4: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 p.m. on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: नवरात्रि माँ कृपा फाउंडेशन साथे गरबे घूमवा तैयार थई जाओ।
2: 10-19 ઓક્ટોબર दररोज सांजे 7 થી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી गरबा अने दांडियानी रमझट भारत थी पधारेला कलाकारों साथे।
1: टिकट्स मंडे टू थर्सडे एंट्री £5, फ्राइडे टू संडे £7। वेन्यू माँ कृपा फाउंडेशन हॉल, फर्स्ट फ्लोर यूनिट 2, 10 स्टोनफील्ड वे, साउथ राइसलिप, HA40JS।
2: बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0772-287-509।
1: ए हालो गरबे।
3: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
4: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
3: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
3: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर वेम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड वेम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.

0: क्या जमाना था वो भाई। के डाकिये का इंतजार होता था, पलकें बिछाए राह देखते थे कब डाकिया आएगा डाक लाएगा। भाई वो जमाना ही कोई और था। डाकखाने बंद हो गए हैं, डाकिये रिटायर हो गए वो स्टैम्प भी अब कभी कभार देखने को मिलती हैं, लेकिन वो जमाना था जब प्रेमिका कहती थी
1: सुनो हर रोज एक चिट्ठी लिखना,
0: और भाई वो चिट्ठी हर रोज एक लिखना शुरू भी कर देता था। जब वापस लौटता तब पता लगता उसने डाकिये से ही शादी कर ली। भाई इतने बार मिलवाओगे डाकिये से तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ना। डाकिया डाक लाया। भाई बैक टू बैक संगीत सुनवाया हमने आपको, हर घंटे में ये क्रम होता है। और अब भाई कुछ एक जानकारी साझा करनी है आपके साथ। अरे बस कर यार, मैं दुखी हो गया हूँ भाई इससे। ये जो मेरा हेडफोन देख देख, अब तेरे को बंद ही कर देता हूँ मैं बिल्कुल। हाँ तो भाई एक तो आपको ये बताना था कि कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार। डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ। जियो हॉटस्टार इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्काई TV एज एन ऐप।
2: Like our gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: दिल मिल रहा है साहब, अगर आज आपका जन्मदिन है तो स्वीकार कीजिएगा। Many many happy returns of the day with हर हार्ट। दिल का आज दिन है और दिल मिल रहा है।

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और भाई रवि शर्मा का दिल खुश कर रहे हैं लोग मैसेज भेज करके आज के चिंतन के प्रति। अब विशाल कहते हैं कि आपका चिंतन सुना, दिल को छू गया और फिर कई हफ्ते बाद मैंने आज माँ को फ़ोन किया, बात करके बहुत अच्छा लगा और माँ को मैंने बता दिया क्यों कर रहा हूँ फ़ोन। मिस करता हूँ भाई, मिस करना चाहिए क्योंकि एक पल के लिए भी माँ की आंखों से ओझल होते थे तो माँ कितना परेशान हो जाती थी और हम बाहर आकर के भूल जाते हैं माता पिता को। बहुत अच्छा किया विशाल। और पाकिस्तान में हमारे एक भाई कदरदान लिसनर हैं, मुमताज़ अहमद मुग़ल, तो आपने भी भाई मैसेज भेजा है, अच्छा लगा आपका संदेश, थैंक यू वेरी मच विजय, सो नाइस ऑफ यू। और आप हैं हमारे पटेल साहब। बीना पारेख जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने नाम नहीं लिखा है अपना, ढूंढ लेंगे हम, नाम भी ढूंढ लेंगे पता भी नहीं। मधु थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा। अविनाश पटेल जी, सो नाइस ऑफ यू, मुझे एहसास इस बात का कि आप रेगुलर लिसनर हैं हमारे। और वेम्बली में इंदिरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, पम्मी स्लाव में हैं। और रंजन जी, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चिंतन जो है आप सुनते हैं रेगुलरली, मुझे इस बात का एहसास है और आपका एहसास है मुझे और एहसान भी है आपका। सुनते रहिएगा। अब एक सूचना आपके लिए और वो संदेश क्या है,
0: Like a Extra Podcast Updates,
3: पॉडकास्ट नंबर 35, राजबदन 5 ईयर्स शोकेस। भाई राजबदन हमारे CEO हैं और जब से उन्होंने टेक ओवर किया है 5 सालों में काफ़ी संघर्ष करके, नए नए प्रयोग करके और स्टेशन को कुछ नई उसमें सांचे में ढाला है और कई नए स्टेशन जोड़े हैं, कई नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए हैं। कहते हैं 5 साल का जो अनुभव है वो रूबी रज़ा और डोनी ब्रेस्को हमारे इन साथियों के साथ उन्होंने पॉडकास्ट में साझे किए हैं। और भाई आप देखना चाहते हो तो बता दूं आपको, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर 3rd ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Visit travelhubworld.com.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 hour line.
8: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
9: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in app. Quick, simple

0: नवरात्रि का जश्न।
1: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
0: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
1: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
0: टिकट्स बुक करो segalondon.co.uk।
1: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।
2: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु गुरु,
4: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
2: साधू, तो शुभकामनाएं में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
5: शीघ्र शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
6: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Book online at Eventbrite.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: वन एंड ओनली वन रवि शर्मा ऑन योर नंबर वन रेडियो।

0: तेरी अदाओं पे मर मर गए हम भाई, एक और गीत महमूद साहब पर पिछला इस बार हमने प्रोग्राम में शामिल किया, लेकिन आपको बता दूं कि भाई इस गीत से मेरा खास लगाव रहा। हमारा एक ऑर्केस्ट्रा होता था और जिन दिनों मैंने भाई स्टेज से पैसा कमाना शुरू किया उससे पहले बड़ी मेहनत की, फिर देखा कि बातों से भी पैसा कमाया जा सकता है। तो जब मैं मंच पर जाता था मैं कॉम्पियर करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए स्टेज को, एज ए क्या कहते उसको अनाउंसर, और भाई कलाकार जितने हमारे सिंगर थे बहुत बढ़िया थे। एक ने तो अलका याग्निक के साथ और आशा जी के साथ, कई गायिकाओं के साथ उसने ड्यूट गाए, कवालियाँ भी गाई। आप जानते हैं कलाकारों के बीच में रह करके काफ़ी कुछ सीखा। तो ये गाना मैंने पहली बार स्टेज पर गाया उसी ऑर्केस्ट्रा में, वो सारा म्यूजिशियन सारे जानकार थे। अब तो जब भी जाता हूँ सब इकट्ठे होते हैं और हम लगाते हैं, महफिल सजाते हैं स्टूडियो में इंडिया में। तो भाई वो उन दिनों में ये गाना मैंने गाया, मैं गुनगुनाता रहता था। तो कहते हैं गाइए गाइए गाइए, अच्छा गाते हैं। ये गीत मैंने गाया और भाई मुझे अच्छा लगा, सुनने वालों को अच्छा लगा, लेकिन सारे सिंगर्स हमारे ऑर्केस्ट्रा के और कहते हैं अपनी औकात में रहे जो तेरा काम है वो बढ़िया करता है तू वही करता रहे, दूसरों के कामों में दखल अंदाजी मत कर, हमारी पेट पर लात मारने का क्यों प्लान बना रहे। लेकिन साहब बताऊँ आपको क्या कलाकार थे वो। आज भी जो एक नगाड़ा बजाने वाला था हमारे बीच में है अभी भी, भगवान उसकी उम्र लंबी करे भाई, उसके साथ मैं जाता हूँ जब गाता हूँ इतना मज़ा आता है कि बस ऐसे ऐसे कलाकार जो है उनके साथ, एक जो हारमोनियम बजाता है वर्ल्ड फेमस है भाई, इतनी बढ़िया धुने निकालता है वो। और हम उसे टीटू कहते थे, अब वो दादा बन गया है, मतलब बेटे पोतों वाला है, लेकिन अभी भी हम उसको टीटू ही कहते हैं टीटू सुभाष नगाड़ा और भाई मधु चोपड़ा और हमारी जो फीमेल सिंगर थी वो सब वो कलाकार याद आते हैं। ड्रम पर जो था और ढोलक पर जो था, सैक्सोफोन हमारे महेंद्र भाई बजाते थे दिल्ली से आते थे स्पेशल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहनों भाइयों वो दिन भी क्या दिन थे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लीजिए साहब बता देता हूँ आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके आज कितने रुपए दे रहे हैं पाउंड के बदले, नोट कीजिए 126.6 रुपीस, ये भारतीय मुद्रा में इंडियन करेंसी में एक पाउंड के बदले वो दे रहे हैं। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीस एंड सीस अप्लाई। दिस इज लाइक अ गोल्ड। This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से, पहली से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर, 22 पामस्टन रोड, हैरो, HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678।
3: We're finally going home for the wedding.
4: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
4: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
4: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान।
7: देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
6: डेजर्ट सफारी,
7: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
6: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
7: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410।
8: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड। हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, केटरर्स, फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड कैटलॉग टुडे। कॉल ऑन 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
11: Have you noticed the way fans shout at football matches?
12: Oh, wake up!
11: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
13: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
14: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और मेरे भाइयों, Artist of the Week Like a Gold पर हैं इस सप्ताह जनाब कैफी आजमी

बारिश के तूफानी मौसम में गाड़ी ड्राइव करते हुए इस गीत की गूंज भाई देर तक जो है लोगों के दिल दिमाग पर रहेगी। और ये जन्मा था कैफी आजमी साहब की कलम से। आर्टिस्ट ऑफ द वीक कैफी आजमी साहब।

0: Feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और लीजिए साहब, कुछ एक सूचनाएं आप तक पहुंचा दें भाई। एक तो ये उदित नारायण और आदित्य नारायण, पिता पुत्र की ये जोड़ी आ रही है रंग जमाने 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म्स विद हिज सन आदित्य नारायण। ओवरी नाम है उनका शो हो रहा है, वेम्बली में है ये भाई। बड़ा ज़बरदस्त वेन्यू है, बहुत बड़ा है साइज में। मुझे याद है जब उदित नारायण का शो हमने रॉयल अल्बर्ट हॉल में जो करवाया था तो कॉम्पेयर किया था, मैंने स्टेज पर शुरू किया था और एक बॉम्बे से भी वो लेके आए थे। आदित्य नारायण भी आए थे साथ, लेकिन भाई उन्होंने गाया नहीं था, बहुत छोटे थे, लेकिन नेचुरल उनकी जैसे एक तरह से ट्रेनिंग चल रही थी। बाद में रॉयल अल्बर्ट हॉल में तस्वीरें उतारते हुए उन्होंने कहा था मेरा ये एक अरमान था। उदित उन दिनों भाई छाए हुए तो थे, उन्होंने कहा कि मेरी ये तमन्ना थी कि मैं रॉयल अल्बर्ट हॉल में कॉन्सर्ट करूं। और रवि जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उन्होंने तस्वीरें उतारी। और भाई उदित नारायण के विषय में आशा जी ये प्रेडिक्शन करके गई थी। मैंने उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछा था कि किस गायक कलाकार पर आपको भरोसा है कि वो आने वाले समय का मोहम्मद रफ़ी या आने वाले समय का मुकेश यानी किशोर कुमार की तरह इन बड़े बड़े कलाकारों की तरह नाम बनाएगा। तो उन्होंने कहा था ये जो लड़का आया है ना, और ये उन दिनों की बात है जब उनका वो गाना आया था पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, कहती देखना तहलका मचाएगी आवाज़ उसकी, धूम मचाएगा ये लड़का, स्टेज पर उपस्थिति उसकी छा जाएगा। और सचमुच छा गया भाई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 20 दिसंबर को वेम्बली में उनका शो है, टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS, एक्सक्लूसिवली रेडियो पार्टनर इज लाइका रेडियो नेटवर्क। और एक और भाई जिन्हें हम बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है वो अभिनय करते हैं, कॉमेडी करते हैं, कैच द कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन एट ओबो अरीना वेम्बली ऑन थर्सडे 29th अक्टूबर एंड लेस्टर एट मेट्रोली अरीना ऑन सैटरडे 31st अक्टूबर। टिकट्स एट AXS, इवेंट ब्राइट एंड टिकट मास्टर, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क। वी लव यू सुनील, वी आर वेटिंग, जल्दी आइए और भाई सबका हंसा हंसा के पेट दुखाइए।
0: ये है लाइका गोल्ड, फॉरगॉटन मेमोरीज रिफ्रेश्ड, लाइका गोल्ड।

0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: साउथहॉल ट्रेवल का संदेश भाई फिर याद दिला देते हैं एक बार आपको, दुबई वाली बात वही कि भाई दे आर नोन फॉर देयर हॉलीडे डील्स टू दुबई. कॉन्टैक्ट साउथहॉल ट्रेवल टुडे ऑन 02085748410. साउथहॉल ट्रेवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है Leica Gold.
3: Leica Gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 02087828833 और विजिट TravelHubWorld.com.
5: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
5: विजिट TravelHubWorld.com.
6: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी.
7: सामड़े काम कर मेडिकल देले अने नाकता चाहिए
6: એટલે सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी. प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख. डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक.
8: तू गांडो छे आगे वाला ब्रेक मारे तो पाछळ वाला ब्रेक मारे ने यार
9: तारी मारी दोस्ती.
6: स्टारिंग विराज खिलानी, दीप वैद्य, विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी. मित्रता इन सिनेमाज नाउ. यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया.

आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। समझ में नहीं आता कि भाई ये प्यार है या धमकी।

0: सारी उम्र डर में कटी है भाई, क्या आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। बंदा सोचता है क्या गलती हो गई यार, घर आ जाओ एक बार, मैं इंतजार कर रही हूँ, आप आ जाओ बस। हाँ हाँ घर आ जाओ। सारी उम्र डर में कटी। पहले कहते हैं कि भाई पैदा हुए माता पिता से डर लगता था बचपन में, स्कूल गए तो टीचर से डर लगता था, फिर पूछो मत उसके बाद ये नौकरी में बॉस से डर लगता था दफ्तर में, उसके बाद कहाँ कहाँ की बताएं साहब, हर किसी से डर लगता था। कहते जाओ आप सबसे डरते रहे, बीवी का नाम नहीं लिया आपने। कहता बीवी का नाम डर के मारे नहीं लिया।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिट 8, ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
2: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द UK। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: London, hello, garbe gumwa. Shri 27 Gam Patidar Samaj Europe sathe mano Navratri Bharatna Live Band sathe. 10 thi 20 October Sanje 7:30 thi at 27 Patidar Center Wembley. Adult tickets £10. 16-17 ane 18 October e £15. 5 thi 10 varshna baalako ne £5. Under 5s free. 11 raat no season pass £100. Radio partner Laika Radio Network. 27 Gam Patidar Samaj na garba itle bestam best.
2: The South Asian Film Festival UK brings to the big screen Raj Kapoor's Sangam in stunning 4K on the 4th of October. Celebrate 50 years of Yash Chopra's Kabhi Kabhi on the 11th of October. And marking its 25th anniversary, Dil Chahata Hai on the 18th of October. And before every screening, a filmy sing-along medley celebrating the greatest songs and stars. Supported by BFI National Lottery Funding, official radio partner Leica Radio. Book now at showcasecinemas.co.uk/SAFUK or visit safuk.com.
3: खाखरा क्रंच भाखरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
4: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
3: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
5: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
6: Winter's coming and Mera Boiler's pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
8: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
9: Up next, Ballybrumbat with Gold Afternoons on Leica Gold.
10: Manoranjan with Ravi Sharma.
11: और बहनों भाइयों, आपसे अब अनुमति लेने का समय हो गया है, लेकिन बता दें आपको कि भाई हमने आज कार्यक्रम में शुरुआत भी महमूद साहब के गीत से की थी। आज महमूद साहब दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। दुनिया में अब भी करोड़ों फैंस हैं उनके, भाई जाते जाते उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हम आपसे अनुमति लेंगे। मैंने बताया कि महमूद भाई डायरेक्शन भी की उन्होंने, एक्टिंग तो की ही, कॉमेडी की, कुछ सीरियस रोल भी किए, और साहब वो गायक कलाकार भी थे, संगीत की उनको अच्छी खासी समझ थी। आदमी को आना जाना चाहिए, अपना चलने का समय हो गया है, मिलने जुलने का बहाना चाहिए, प्यार का मतलब बताने के लिए हीर का किस्सा सुनाना चाहिए, पलकों की झालर सजाने के लिए आंसुओं का शामियाना चाहिए, और दुनिया में हंसने हंसाने के लिए महमूद साहब की आवाज़ में गाना चाहिए।

0: हमारे सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए, बोलो ना।
1: मंदिर पहुंचा, एक बच्चा देखा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के, ये माँ को दे दूं मंदिर में रख दूं। पंडे ने देखा वो जालिम समझा, ये पाप है मेरा बस मुझको घेरा। फिर पुलिस आई दी लाख दुहाई, वो एक न माना पड़ गया ले जाना। सोचा ले जाकर फेंकूंगा बाहर, सौ जतन लगाया कोई काम न आया, सड़कों पर बेचा गाड़ी में फेंका, बन गया ये बंदा इस गले का फंदा। मैं फिर भी टाला कचरे में डाला, फिर बारिश आई अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की मेरी छाती धड़की, एक तीर लगा मैं वापस।

0: एंड आई स्पेशली वांट टू थैंक रवि शर्मा जी जिन्होंने अपने लिस्ट में ये गाना रखा हुआ था, लेकिन जब उनको पता चला कि मैं ट्रिब्यूट करने वाला हूँ, इन्होंने कहा कि मैं आप प्लीज़ आपके लिस्ट में डाल दीजिएगा. सो थैंक यू रवि शर्मा जी, ही ऑलवेज प्लेज दिस सॉन्ग वेन एवर देर इज एनी सॉन्ग्स ऑफ महमूद अली. एनीवे, महमूद अली उनको याद किया जा रहा है. भाईजान मैं कहता था प्यार से, घर भी आते थे, मिलते थे. योगेश वोरा जी के शो में हम गए थे एंड परफॉर्म भी किया था, और वो हमारे चीफ गेस्ट थे. दैट वॉज इन किलबर्न. एनीवे, 94th बर्थ एनिवर्सरी. आज जिंदा होते तो ही वुड हैव बीन 94 इयर्स यंग, बट ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 71. And he passed away in Dunmore, that is Pennsylvania in United States of America, 23rd of July 2004 में. अब ये गाना जो है फिल्म कुंवारा बाप का, उसके पीछे एक कहानी है, और कहानी बड़ी सैड थी, लेकिन दोनों फिल्में भूत बंगला और कुंवारा बाप दोनों का म्यूज़िक आर डी बर्मन ने दिया था. जब वो एस डी बर्मन के पास गए थे कुंवारा बाप का म्यूज़िक, एस डी बर्मन को गुजारिश की थी कि आप म्यूज़िक कीजिएगा मेरी फिल्म का, एंड महमूद भाईजान को एस डी बर्मन ने कहा कि मेरा टाइम टेबल बहुत मतलब स्ट्रिंजेंट है, इसलिए मैं कर नहीं पाऊँगा बिकॉज वक्त नहीं है मेरे पास. सो इन्होंने देखा कि कोने में आर डी बर्मन बैठे थे, तो बोले कि ये छोटे नवाब जो बैठे हैं वो करेंगे मेरा म्यूज़िक क्या? तो और फिल्म का नाम भी छोटे नवाब था. वो हंस पड़े और कहा कि बेशक बात करो. एंड देन आर डी बर्मन के साथ बात हुई, दोस्ती हुई, और कुंवारा बाप का म्यूज़िक आर डी बर्मन ने दिया. अब एक ट्रू स्टोरी जो है इस द स्टोरी ऑफ मखदूम अली. मखदूम अली इनके बेटे महमूद जी के. And what had happened was Kumara Bap resulted from an incident involving Mahmood's son. Ek saal ka Maktoum, jisko pyar se Mackie bulate the. Main ab Mackie bulaunga. Mackie was taken to hospital with 103 degrees temperature. They lay him on a slab of ice. Aur doctors ne kaha ke he had polio. So as the disease regressed from one step to another on Mackie, Mahmood decided to make a film, Kuwara Bap, of a father and son to spread the awareness of polio. Polio ki awareness ke liye inhone Kuwara Bap ki kahani banai, aur act bhi kiya aur direct bhi ki film. Abhi the song Saj Rahi Gali Teri Maa, इसमें बार यूनक्स यानी कि हिजड़ों को बॉम्बे से बाय एयर लिया गया. बिकॉज द शूटिंग वॉज फॉर 45 डेज एट महमूद्स 186 एकर फार्म इन येलाहंका. एंड बेसिकली शूटिंग के लिए सबको उड़ाया गया वहाँ से, 12 यूनक्स को at the shoot, and Mahmood insisted on a propeller fan. और जो फैन होता है बड़ा सा शूटिंग में, वो अवेलेबल नहीं था कहीं भी बेंगलोर में, तब वो फैन मिल नहीं पा रहा था. सो ही वेंट टू रामगढ़ गए वहाँ पर रमेश सिप्पी वॉज फिल्मिंग शोले, और रमेश जी वॉज काइंड इनफ टू लैंड हिम वन फ्रॉम हिज प्रॉप्स ऑफकोर्स. एंड रफ़ी साहब ने बाखूबी से गाया. एक्चुअली देखा जाए तो रफ़ी साहब ने कितने गाने गाए, अबाउट 85 सॉन्ग्स फॉर महमूद साहब. जैसे कंपैरिजन में जॉनी वॉकर जी के लिए 155 सॉन्ग्स ही हैड संग, एंड राजेंद्र कुमार के लिए 150, धर्मेंद्र के लिए 114. तो 85 इज़ क्वाइट अ गुड फिगर फॉर महमूद साहब. And Mackie, unke bete, he did his debut as an actor. He was 15 years old and Mahmood was a rickshawala. and the shooting was for 45 days at Mahmood's 186 acre farm. ये कहानी जब एक साल का मखदूम था तब उसको पोलियो का असर हुआ और उसके बाद इतने सालों बाद जब वो 15 साल का हुआ तब ये फिल्म बनी थी. आई थॉट आई शेयर इट आउट टू यू. महमूद साहब 25 नॉमिनेशंस टोटल, 19 अवार्ड्स का नॉमिनेशन मिला था बेस्ट कॉमिक के लिए. एंड देन द अवार्ड फ्रॉम 1967 वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ बेस्ट कॉमिक, नॉट 1954. जैसे सिंगर्स का वो था, 1954 से अवार्ड्स जब शुरू हुए थे तब मेल फीमेल के अवार्ड्स भी साथ ही हुआ करते थे, फिर सेपरेट हुए लता मंगेशकर के कहने से. और बेस्ट कॉमिक के अवार्ड्स जो थे वो 1967 से इंट्रोड्यूस किए गए थे. 6 नॉमिनेशंस ही गॉट फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर. 300 से ज़्यादा फिल्में इन्होंने की, एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर. वी आर टॉकिंग अबाउट महमूद. विल हियर हिज सॉन्ग्स. ऐसे अच्छे अच्छे गाने लेकर आया हूँ मैं, सुनना.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.6 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening to Bali Brahmert in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
6: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
5: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
6: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
5: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
7: South on Travel, 7 days a week. South on Travel, 24 hours a day.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Southall Travel.
9: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel can take you there.
10: Southall Travel. At all protected.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Achha, usually Mahmood saab ki jab tribute karta hun, people are expecting me to play, you know, Padosan film ka gana and all the nakhre wale gaane. Lekin I chose to show you the other side of Mahmood saab, jahan pe melodious gaane bhi inhone inke upar picturize hue the. So just wanted to make a little correction ke apna wo jo tha na कुंवारा बाप, उसका म्यूजिक आई थिंक राजेश रोशन ने किया था, लेकिन देर वॉज अनदर फिल्म छोटे नवाब, आई थिंक दैट वॉज द वन विच वॉज गिवन टू महमूद साहब एंड आर डी बर्मन एंड भूत बंगला. आई थॉट आई मेक अ लिटिल करेक्शन बिकॉज टाइटल्स में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था वहाँ पे, बट इट्स ऑलवेज गुड टू करेक्ट इट. या थैंक यू वेरी मच. एंड आगे दूसरा गाना सुनिए, प्यासे पंछी. वाह क्या बात है, साइकिल के ऊपर महमूद साहब.
3: ये है
4: लाइका गोल्ड,
3: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: प्यासे पंछी फिल्म का 1961, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, घोड़ा गाड़ी म्यूजिक है ना कमर जलालाबादी, दैट्स राइट, ये घोड़ा गाड़ी वाला गाना।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम, ग्रैब योर कोको बोल टुडे।
2: तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो,
3: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3229, Indian rupees 126.85, Afghan Afghanis 85.19, Pakistani rupees 366.54, Kenyan shillings 171.47 and Mauritian rupees 62.96.

0: सॉन्ग पिक्चराइज्ड ऑन महमूद साहब एंड उषा खन्ना ने क्या म्यूजिक दिया. फिल्म है शबनम.
1: गुड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रह्मभट्ट. बाली ब्रह्मभट्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय जेमिन फूड्स. तुम्हारा टी टाइम नो असली हीरो. दाल भात, पाव भाजी, बिरयानी, नमकीन, खाखरा, चिक्की, पोटैटो चिप, मैंगो पल, पानी पूरी, सो मेनी वेराइटीज फॉर एवरीवन. मर्शे तुम्हारा नजीक ना एशियन शॉप्स मा.
2: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
4: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी, थोड़ा देसी.
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी.

0: अभी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
1: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटवुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
2: तो माने याना, माने दिलदारा।
3: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
4: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
5: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन। 29 सितंबर थी 5 ऑक्टोबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य श्री जिग्नेश दादा। वेन्यू 10 स्टोनफील्ड वे, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 2, साउथ राइस्लिप HA40JS। रोज कथा पछी महाप्रसाद, पोथी यात्रा, कपिल नारायण कथा, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह अने पूर्णाहुति हवन जेवा पवित्र प्रसंगो मां जरूर जोड़ाओ। वधु माहिती माटे कॉन्टेक्ट करो 077-22-87509।
6: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिट 8, ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
7: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24.

There you go, महमूद साहब की आवाज तो सुनानी थी मुझे आपको। गीता दत्त और मन्ना डे, इन्होंने बड़ा अच्छा प्यारा गीत गाया था जिद्दी में।

0: And we are starting a journey for the rest of the week of 90 heroines that Lata Mangeshkar ji sang for. And we are starting in alphabetical order. बड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे और ए टू जेड से मैंने शुरुआत की. लेकिन पहला गाना जो ऐश्वर्या राय के लिए जो था, हमको हमी से चुरा लो, जो फिल्म है मोहब्बतें. नाउ दैट इट डजंट कम इनटू आवर लाइका गोल्ड की कैटेगरी में, सो आई कैन नॉट प्ले द सॉन्ग फॉर ऐश्वर्या राय. बट अमिता से मैंने शुरू किया और जो गाना मैंने आपको सुनाया दैट वाज गूंज उठी शहनाई 1959 का. फिर 24 साल के बाद अमृता सिंह, दैट इज इन फिल्म बेताब 1983. सो वी आर फॉलोइंग ए टू जेड. वी हैव कवर्ड अमिता, अमृता सिंह एंड द नेक्स्ट इज गोना बी अनीता गुहा. फिर उसके बाद अनीता राज, अनीता राज के बाद अपर्णा सेन, फिर उसके बाद अरुणा ईरानी एंड देन आशा पारेख. नाउ दीज आर दी लेडीज हुज नेम्स बिगिन विद ए, द हीरोइंस. उसके बाद नेक्स्ट आवर में हम जाएंगे ऑन बी. बी से होगा बबीता बेगम पारा. बेगम पारा का गाना अभी भी मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल गया तो सुनाऊंगा वरना स्किप करना पड़ेगा. बबीता बेगम पारा, भाग्यश्री, बीना राय, बिंदिया गोस्वामी. सो सुनते जाइएगा, लुत्फ उठाते जाइएगा. इट्स क्वाइट ए मिक्सचर ऑफ सॉन्ग्स, यू कैन से अ कॉकटेल. क्योंकि देखो ना, 1959 का पहला गाना सुना और सीधा जंप मारा 1983. नेक्स्ट इट विल बी 1961, फिर उसके बाद 1984, फिर वापस 1969. ऐसे मैं गाने सुनाता जाऊंगा एंड एंजॉय रेस्ट ऑफ द वीक विद हीरोइंस फॉर विच लता मंगेशकर जी हैड संग 90 हीरोइंस एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन एंड इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू. एंड आपके मैसेजेस जो आ रहे हैं उससे मुझे पता चल रहा है कि अच्छी अच्छी कमेंट्स आ रही हैं. आज रवि बासवानी, एक इंडियन फिल्म एक्टर, बेस्ट नोन फॉर हिज रोल इन चश्मे बत्तूर 1981 की फिल्म एंड कुंदन शाह की फिल्म जो थी जाने भी दो यारो, एंड ही हैड वन बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड 1984 में जीता था. दैट वाज नन अदर देन रवि बासवानी, हु वाज बोर्न ऑन 29th सितंबर 1946. इट्स हिज 80th बर्थ एनिवर्सरी. सो उनको याद करके मैं मेंशन कर रहा हूँ. ऐसे लोगों को हम भूल नहीं सकते. बट आई कैन नॉट प्ले दीज सॉन्ग्स बिकॉज आई एम डूइंग लता मंगेशकर्स ट्रिब्यूट एट द मोमेंट. सुनते जाइएगा, लुत्फ उठाते जाइएगा. नेक्स्ट वी हैव ऑन द लिस्ट अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वी गॉट अनीता गुहा.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.6 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons.
3: Gold Afternoons.
2: Proudly sponsored by Gemin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
4: This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
3: We're finally going home for the wedding.
6: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed, but what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
11: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
10: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
11: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
10: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
11: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
2: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
3: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers. The Diamond Specialists. Call 020-8767-2142.
4: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
6: गुस्सा की माफ, लेकिन कहना जरूरी है. अनीता राज, लता मंगेशकर सैंग फॉर अनीता राज मैनी फिल्म्स. ये है जमीन आसमान, 1984 की फिल्म है. लता मंगेशकर सिंगिंग फॉर 90 हीरोइंस फ्रॉम ए टू जेड. वी आर स्टार्टिंग दिस जर्नी विद द लेटर ए. जुड़े रहिएगा.

0: कल्याण जी आनंद जी का संगीत और गुलशन बावरा की लिरिक्स। बट द पॉइंट इज, फिल्म विश्वास में 1969 की फिल्म, लता मंगेशकर जी ने गाया अपर्णा सेन के लिए। 90 हीरोइंस फॉर विच लता मंगेशकर सैंग, दिस इज लेटर ए, अपर्णा सेन।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods, बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात. Available at Asian stores near you.
3: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी।
5: सामने काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए।
6: नाकता चाहिए એટલે
4: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक।
7: तू गांडो छे आगे वालो ब्रेक मारे तो पाछळ वालो ब्रेक मारे ने यार तारी मारी
4: दोस्ती। स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी मित्रता इन सिनेमाज नाउ। यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: London, hello, garbe gumwa. Shri 27 Gam Patidar Samaj Europe Sate Mano Navratri Bharatna Live Band Sate. 10 thi 20 October Sanje Sada Sat thi at 27 Patidar Center Wembley. Adult tickets £10. 16, 17 ane 18 October e £15. 5 thi 10 varshna baalakone £5. Under 5s free. Agyar Ratno Season Pass £100. Radio Partner Laika Radio Network. 27 Gam Patidar Samadna Garba Itle. Bestam Best.
2: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से पहली से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर 22 पामस्टन रोड हैरो HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 02084।

0: ऑफ कोर्स लता जी हैज संग सो मेनी सॉन्ग्स फॉर अरुणा ईरानी, स्पेशली फिल्म कारवां का दिलबर दिलबर दिल दिलबर दिलबर दिलबर दिल से प्यारे दिलबर दिल से प्यारे, दैट्स द वन, या या. लेकिन दैट सॉन्ग हैज रिसेंटली बीन प्लेड, सो आई चोज दिस वन. नेक्स्ट इज आशा पारेख. वी आर डूइंग सॉन्ग्स ऑफ वी आर प्लेइंग सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर हु हैज संग फॉर 90 हीरोइंस. दिस इज ए. नाउ वी कम टू आशा पारेख.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station.

0: And there you go. Two songs. We are into letter B of Lata Mangeshkar songs. She has sung for 90 heroines. And we started this journey today by covering the letter A. And then we got on to the letter B. Letter A mein humne gaane sunaye. अमिता के ऊपर जो लता जी ने गाए थे, अमृता सिंह, अनीता गुहा, अनीता राज, अपर्णा सेन, अरुणा ईरानी, आशा पारेख. एंड देन वी कम ऑन टू द लेटर बी, जिसमें आपने बबीता का गाना सुना. बबीता जी ने बहुत सारे गाने, मतलब लता जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं बबीता जी के लिए. हमने चुना एक गाना फिल्म राज का, 1967 की फिल्म. एंड दूसरा गाना ऑफ कोर्स मैंने प्यार किया. देयर वाज ओनली थ्री और फोर फिल्म्स दैट शी हैड डन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, भाग्यश्री एंड मैंने प्यार किया हैपनिंग टू बी द मोस्ट फेमस वन. तो हमने कबूतर जा गाना आपको सुनाया, जो लता मंगेशकर जी ने बड़ी बाखूबी से गाया विद एस पी बाला सुब्रमण्यम. हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक इज कैफी आजमी और हमने गाना चुना है फिल्म रजिया सुल्तान का. गाया किसने? बट ऑफ कोर्स लता मंगेशकर. आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग ऑल द सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर दैट आई एम प्रेजेंटिंग टू यू. लेटर बी पे नेक्स्ट जो हीरोइन आएगी, दैट विल बी बीना राय. दैट इज आफ्टर अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गाना आ जाएगा, उसके बाद बीना राय एंड देन बिंदिया गोस्वामी. और उसके बाद वक्त मिला तो लेटर सी से चांद उस्मानी का गाना हम आपको सुना देंगे. पर सुनते जाइएगा, मैं हूं बाली ब्रह्मभट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स. एंड थैंक यू, वंडरफुल मैसेज by Lalit Bhai Sudra. It says, Super Se Upar, Lata's songs I'm enjoying as usual. And thank you. Jio Laika and Bali Bandhu, thank you so much for your wonderful messages that I'm receiving. मुझे मेरा अवार्ड मिल जाता है हर रोज़ आपके मैसेजेस के साथ, और मुझे कोई अवार्ड सेरेमनी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. थैंक यू वेरी मच फॉर रिवॉर्डिंग मी एवरी डे विद योर मैसेजेस. थैंक यू. सुनते रहिएगा, अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक कैफी आजमी कमिंग नेक्स्ट.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And looking at the awards, looking at the rates, मैं सपनों में खोया हूँ. Your £1 in British sterling can get you up to 126.6 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Like a Gold.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India, bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, every day at 8 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर वेम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉक-इन्स का भी स्वागत है. अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575. केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिट 8, ट्रेडर वेम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, वेम्बली, HA04BD. प्लीज कॉल ऑन 07466997575.
5: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
7: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
6: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
7: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
6: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.

0: Wow, that was Kafi Azmir written song, and that was from Razia Sultan. And now I'll tell you what's coming into town. We've got Sunil Grover live. Catch the comedy genius Sunil Grover live in London at Ovo Arena Wembley on Thursday 29th October and Leicester at Mattioli Arena on Saturday 31st of October. Tickets at AXS, Eventbrite and Ticketmaster. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. And we got Lakhvinder Vadali live in concert. Punjabi legend Lakhvinder Vadali. Friday 16th of October at Crystal Grand Slough and Sunday 18th October at ICC Birmingham. Like
1: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
4: ये तो बताओ, कोई पता चला?
5: गुरु गुरु,
6: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
4: साधु, तो शुभकामनाएं में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
8: टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक online at Eventbrite.
1: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
9: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
10: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-6333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर travel mantra.

0: sisters fighting, and the bad things she used to fight with people and all that business. आज उनके गाने सुनकर लोग सोच रहे थे कि वाह क्या आवाज थी. There he is. She is singing anything and everything. एक मिनट मैंने राग सुनाया आपको फिल्म अनारकली का, एंड ये पॉप सॉन्ग रूट होना फिल्म एहसास का. आई मीन शी संग जितनी पुरानी बॉलीवुड जहाँ से शुरुआत की तब से लता मंगेशकर जी ने शुरुआत की थी, एंड शी हैज़ बीन सिंगिंग. शी आई थिंक शी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी स्टार्टेड सिंगिंग, और देखा जाए तो एज ओल्ड एज बॉलीवुड वी नो. इन्होंने 2015 में लास्ट सॉन्ग सेवन डेकेड्स में शी हैड संग फॉर 90 हीरोइंस, एंड वी हैव कवर्ड लेटर ए एंड लेटर बी. अब देखते हैं, वक्त मिलेगा तो लेटर सी पे जाते हैं. चांद उस्मानी, लेट्स सी. आई होप यू आर एंजॉइंग. थैंक्स विशाल फॉर दैट ब्यूटिफुल मैसेज. अमेजिंग शो बाली भाई. आई कैन इमेजिन द हार्ड वर्क गॉन इन टू क्रिएटिंग दिस कलेक्शन. यस, I had to break down from A to Z all the heroines, और heroines के सब गाने choose करके, and then उसमें से एक लेना और आपको सुनाना. That is the amount of hard work. मतलब एक 3 घंटे का show होता है, उसके पीछे 6 घंटे की मेहनत होती है.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan, and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Okay, each currency equivalent to 1 sterling pound, US dollars 1.3225, Indian rupees 126.87, Afghan Afghanis 84.66, Pakistani rupees 366.44, Kenyan shillings 171.53, and Mauritian rupees 62.95.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.33 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
1: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटवुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com. Come.

0: रोशन का संगीत है एंड लता मंगेशकर सिंग्स फॉर चांद उस्मानी फिल्म बाराती 1954.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स गुडनेस इन एवरी बाइट ट्राई इट टुडे अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर.
0: यस इट्स सैंडी शाह ओवर हियर एंड राज बद्दन ऑन लाइक हर रेडियो मिडलैंड.

परी ये सुबह मस्त भरी यूं हंसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद।

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी
2: सामने काम कर मेडिकल दे ले अने नाकता चाहिए
3: એટલે
1: सोल सूत्रा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक
4: तू गांडो छे आगे वालों ब्रेक मारे तो पाछळ वालों ब्रेक मारे छे यार
1: स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी मित्रता इन सिनेमाज नाउ यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया
5: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
6: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
7: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
8: ऐड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
7: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
9: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627
10: ब्रांड्स दैट यूज रेडियो आर 49% मोर लाइकली टू गेट नोटिस्ड एम्प्लीफाई योर एडवर्टाइजिंग एट radiocenter.org अस्यूमिंग यू वांट टू गेट नोटिस्ड
11: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाए
12: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है
13: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Southall Drive with Sandy Shah. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: And they're the ones who you need to contact on 0208 574 8410. And that's to get the best deals to Dubai. Southall Travel is also atoll protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Like a gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
4: We'll be right back.

0: This is Sandy Shah on Gold Drive. WhatsApp message Like a Gold now on 0744 23 23 23.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com.
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra? We'll be right back.

0: Southall Broadway to the London Tube, UK. The big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
1: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबीइंग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर यूनिटेड ट्रेडर विम्बली ग्राउंड फ्लोर 87 ईलिंग रोड विम्बली HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: पितृ पक्ष में पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में सिद्ध आश्रम धाम में आयोजित है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शास्त्री श्री नीलेश जी महाराज के मुखारविंद से पहली से 7 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से। स्थान इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर 22 पामस्टन रोड हैरो HA37RR। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 02084260678।
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन।
3: आर यू सिटिंग ऑन अ मॉर्गेज एंड गेटिंग नथिंग back? What if your remortgage paid you?
4: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
3: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
4: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
3: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
5: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ova Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
7: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beat, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
8: Add Desi Tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
7: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
9: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
10: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: दोस्ती मस्ती अने इमोशंस नी एक अनोखी स्टोरी
2: सांभळ एक काम कर मेडिकल देले अने नाखता जाइए
3: એટલે
1: सोल सूत्र प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स मित्रता फ्रेंडशिप नी लव स्टोरी प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिव गोहिल एंड मानसी पारेख डायरेक्टेड बाय ओनिल कर्णिक
4: तू गांडो छे आगे वाला ब्रेक मारे तो पाछळ वाला ब्रेक मारे ने यार
1: स्टारिंग विराज खिलानी दीप वैद्य विशाल पारेख एंड विश्वा जोशी मित्रता इन सिनेमाज नाउ यूके रिलीज डिटेल्स माटे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो बकरानिया मीडिया.
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 hour line.
6: No need to fly.

0: Back home this summer holiday, come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
1: क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
2: गुरु गुरु,
3: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
2: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
3: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
1: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
4: टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन at Eventbrite.
5: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
6: लंदन तैयार हो जाओ, आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
7: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
6: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
7: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
6: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
7: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
6: टिकट बुक करो सेगा लंदन.co.uk।
7: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: Next, Anisa Nasir with The Big Show on Like a Gold.
3: Hello friends, मैं हूँ सरिता सबरवाल. Every weekend, 4 till 7, बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. Saturday and Sunday मेरे साथ ही रहेंगे.
2: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: दिन गुजरता है जिक्र आरस में और फिक्रे गेसू में रात होती है। हम सुनाते हैं शेर में जिसको, वो आप ही की बात होती है। लीजिए दोस्तों, आगाज हो गया। आप लोग ऑलरेडी कोशिशें कर रहे हैं बूझने की कि गीतों में क्या कॉमन है, और मुझे लग रहा था कि कुछ लोग वही कहेंगे जो मैंने सोचा था, जबकि वो है नहीं। ताहिर जी, आपको मैं बहुत देखने लगी हूँ गलत वाली लाइन में मेरा मतलब गलत जवाब भिजवाने वाली लाइन में। मंजीत संकर जी, आपका जवाब मैं नहीं मान सकती क्योंकि वो जवाब नहीं है। और संध्या भावसर जी, आपने क्या लिखा जरा देखी, गलत है जवाब।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you up to 126.6 Indian rupees today. Do not forget to exchange in branch online या फिर SBI Yono mobile app के जरिए। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और भी T&Cs हमारे यहाँ भी apply होते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाला, सही जवाब देने वाला राजा या रानी बनता है। वैसे तो हमारे लिए सभी राजाज और रानीज हैं, सच्ची में आई मीन इट। मुझे आप सभी बहुत प्यारे शहजादे, राजे, सब कुछ लगते हो, लेकिन बस ऐसे ही है ना, थोड़ा सा लाइट हार्टेड सा एक गेम है। तो नए सुनने वालों को बताना चाहूँगी, गीतों में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। कोई वर्ड हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई म्यूजिक डायरेक्टर हो सकता है, कोई लिरिसिस्ट, कुछ भी।
1: Anisa Nasir live across Greater London with the big show. This part of the show is brought to you by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera, Monday to Friday at 8 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: નવરાત્રી માં કૃપા ફાઉન્ડેશન સાથે ગરબે ઘૂમવા તૈયાર થઈ જાઓ।
3: 10-19 ઓક્ટોબર દરરોજ સાંજે 7-11 વાગ્યા સુધી ગરબા અને દાંડિયાની રમઝટ ભારતથી પધારેલા કલાકારો સાથે।
2: ટિકિટ્સ મંડે ટુ થર્સડે એન્ટ્રી £5, ફ્રાઈડે ટુ સન્ડે £7, વેન્યુ માં કૃપા ફાઉન્ડેશન હોલ ફર્સ્ટ ફ્લોર યુનિટ 2, 10 સ્ટોનફિલ્ડ વે સાઉથ રાઇસલિપ HA40JS।
3: બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 0772-287-5090।
2: એ હાલો ગરબે।
4: क्या आप अपनी हेल्थ और वेलबींग के लिए आयुर्वेदिक केयर की तलाश में हैं? आइए केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर ट्रेडर विम्बली में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक वॉकिंस का भी स्वागत है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 07466997575। केरला हर्बल आयुर्वेदिक सेंटर, यूनिट 8, ट्रेडर विम्बली, ग्राउंड फ्लोर, 87 ईलिंग रोड, विम्बली, HA04BD। प्लीज कॉल ऑन 07466997575।
5: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
6: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
5: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
6: Call 0208 706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
5: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
9: We're finally going home for the wedding.
10: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
11: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
10: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
11: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
10: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
11: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
12: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
3: लाइक अ कूल लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Tere khayal se daman bacha ke dekha hai. तेरे ख्याल से दामन बचा के देखा है, दिलो नजर को बहुत आजमा के देखा है। निशाते जां की कसम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत दिनों तुझे हमने भुला के देखा है, आप आते हैं तो बाहर आती है। फ्रॉम मी टू यू, जी हाँ, सच्ची में आप आते हैं तो बाहर आती है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही गुल खिल गए हैं भाई। वैसे बता दूँ, ताहिर जी, मंजीत संगर जी, संध्या जी, दिलीप सरोज जी, दीनी जी, शगुफ्ता जी, अमिता जी, मेरे फैला हुए जाल में ये मछलियाँ फंसी हैं। तारिक राहील जी, वेरी वेल डन, आज तो आप राजा बन के सबसे पहले आपने सही जवाब भिजवाया। फिर निम्मी जी ने, शकीला नेडा जी, फरजाना जी, पॉल मसी जी, जैस जी, मनु जी, वेल डन, विजय गुडोरी जी, उल्लास जी, पन्ना जी, रमेश लाखानी जी, थैंक यू फॉर द लवली काइंड वर्ड्स, मीरा जी, सरोज जोशी जी, जिशान जी, चौधरी फरीद अहमद जी, अमित पटेल जी, बिल्लू बोचो, खुद होएंगे आप। सब कह रहे हैं वही, आप भी खुद ही होंगे वो। मोहम्मद अयूब चौहान जी, मीनाक्षी जी, अंसर महमूद जी, गीता हर्षद जोशी जी, गुरसरन जी, जी रजनीश जी, नौशीन खान जी, नीलेश जी, वेल डन।
1: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM।
0: फील गुड क्लासिक्स विद अनीसा नासिर।
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही। और भाई मुझे कदमों की आवाज़ आनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, ऑल द वे फ्रॉम अटलांटा, ख़ास तौर पर अटलांटा से। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं अली जी, रेशमा जी, कि आप सुन रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा। लिहाजा बहुत अच्छा किया आपने ये बता के कि यू आर लिसनिंग। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स ऑलवेज ए प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। वीना जी, दिनेश पोपड़ जी, उमर जी दुबई से मुझे पूछ रहे हैं आप क्या कर रही हैं। अब आप ही बताएं, मैं खाना तो नहीं बना रही ना, मैं प्रोग्राम कर रही हूँ हमेशा ही की तरह, जैसे रोज करती हूँ मंडे टू फ्राइडे। उमर जी आप भी बहुत चलाक होते जा रहे हैं। दक्ष शर्मा जी, रीटा जी, जवाब बिल्कुल सही है। अमिता जी कोई बात नहीं, होता है, आप ज़्यादातर सही जवाब भिजवाते हो, आज गलती हो गई तो हो गई, कर ले अनीसा, क्या करेगी, हाँ चुप करके बैठे हो। अनीसा को कह रही हूँ, चलो मैं चुप होती हूँ।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. Join the thousands of heat pump owners feeling warm and fuzzy.
2: I've lived here 20 years. I ain't moving, so I thought better future-proof me home.
3: We started a trend. The Hull Street's applying for the government grant now.
2: With the energy it saves, I don't know what's better off, the planet or my wallet.
3: I'm Neddy's little bookworm. Says it's 3 times more efficient than our old boiler.
1: Feel all warm and fuzzy inside with a £7,500 government grant towards your heat pump at gov.uk/clean energy.
4: Eligibility criteria apply. See website for details.
5: This is Anisa Nasir with The Big Show.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट TravelHubWorld.com.
8: દોસ્તી મસ્તી અને ઇમોશન્સ ની એક અનોખી સ્ટોરી
9: સાંભળ એક કામ કર મેડિકલ દેલે અને નાખતા જઈએ
10: એટલે
8: સોલ સૂત્ર પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ મિત્રતા ફ્રેન્ડશિપ ની લવ સ્ટોરી પ્રોડ્યુસ્ડ બાય પાર્થિવ ગોહિલ એન્ડ માનસી પારેખ ડિરેક્ટેડ બાય ઓનિલ કર્ણિક
11: તું ગાંડો છે આગળ વાળો બ્રેક મારે તો પાછળ વાળો બ્રેક મારે છે યાર
8: તારી મારી દોસ્તી સ્ટારિંગ વિરાજ ખેલાણી દીપ વૈદ્ય વિશાલ પારેખ એન્ડ વિશ્વા જોશી મિત્રતા ઇન સિનેમાઝ નાવ યુકે રિલીઝ ડિટેલ્સ માટે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરો બકરાનિયા મીડિયા
12: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
13: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
12: ये तो बताओ कोई पता चला?
13: गुरु गुरु
14: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
12: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
14: शीघ्र शीघ्र क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November। टू बुक कॉल 0208-514-5400। Book online at Eventbrite.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
15: One performer,
4: countless personalities,
15: a whole universe of entertainment.
4: Sunil Grover, live UK tour 2026.
15: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
4: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
15: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
4: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
15: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network. Work.
16: Two businesses.
17: Same town.
16: Same service.
17: One appears on page one of Google.
16: The other doesn't.
17: Guess which one gets the customer?
16: The truth is brutal.
17: The first page of Google gets the business.
16: Everyone else gets what's left.
17: So here's the real question.
16: When your customers search for what you sell, do they find you?
17: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
16: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
18: बिग बॉस में इस बार मिलेगा वरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान दरखास्तों में जान।
15: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
19: Sonatours.co.uk. 13 days Vietnam and Cambodia departures every month, September to December. Get 100 off if you book this month. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
8: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Rugby.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: फैज जी फरमाते हैं, कब ठहरेगा दर्द है दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी, कब तक अभी राह देखें ये कामते जानाना, कब हश्र मुअय्यन है, क्यामत का दिन कौन सा है, कब हश्र मुअय्यन है, तुझको तो खबर होगी। अली जी को भी खबर है, आफ्ताब गिल जी को भी, तोची जी को, रानी जी को, सईदा जी को, और निमी जी लीजिए आपका नाम दोबारा ले रही हूँ। बिल्कुल सही, आप सेकंड वन थे, यानी आप रानी ऑफ द आवर हो सकती हैं, बल्कि हैं, क्योंकि राज ऑफ द आवर हैं तारिक राहिल जी। और अभी और भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। बिलू बादशाह जी लिखते हैं, जब मैसर थे मोहब्बत के सहारे कुछ दिन, हाँ बड़ी ऐश में गुजरे थे हमारे कुछ दिन, सच कहा इश्क में नुकसान तो दोनों का हुआ, मेरी एक उम्र गई और तुम्हारे कुछ दिन।
1: लाइका गोल्ड करेंसी अपडेट्स आर स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: वन ब्रिटिश पाउंड आज आपको दिला सकता है 366.6 पाकिस्तानी रुपीस, 84.7 अफगानी, 126.8 इंडियन रुपीस, 162.7 बांग्लादेशी टाका एंड 1.3 US डॉलर।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £101.44 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: और हर किसी को कोई ना कोई बिछड़ा हुआ याद आ जाता है ऐसे गीत सुनकर। और ये ऐसे गीत हैं दोस्तों, आप दिन में 10 बार भी सुनोगे ना तब भी आपको अच्छे लगेंगे, बल्कि 10 से भी ज़्यादा बार सुनोगे तो भी आप बोर नहीं होते हैं। कितनी मिठास है, दर्द है और कितना सोज साज, एवरीथिंग। लिरिक्स देखो तो बस लगता है कि हमारे लिए लिखे गए हैं। आवाज़ें सुनो तो कानों के रास्ते दिल में उतर जाने वाले, और आपके मैसेजेस भी बिल्कुल वैसे ही। कीप देम कमिंग।
1: बिगेस्ट इंडियन एंड पाकिस्तानी क्लासिक्स विद अनीसा नासिर।
0: मुझे पता है, दिलीप जी कह रहे हैं मैं रोज जाल में नहीं फंसता हूँ, आज तो फंस गए ना। आई नो फुटबॉल चल रहा है, लेकिन विजय जी तो म्यूट करके देखेंगे, नीलेश जी तो हाथ खड़े कर देते हैं, नहीं भाई हम तो मैच देखेंगे बुलंद आवाज में। देखो जी देखो, जवाब आपने दे दिया, अब आप जो मर्जी करो। गुड इवनिंग।

0: आपके पहलू में आकर रो दिए। क्या प्यारा गीत है। कुछ अश्क हमारे गूंगे थे, कुछ अश्क हमारे गूंगे थे, कुछ कहत यहाँ बिनाई का, इस शहर में अपना रोना भी यूं समझो कि बेकार क्या। अब फरजाना जी कह रही है, निशा जी ये गाना तो रात को खामोशी से सुनने वाला है। देखो जी बाहर नजर दौड़ाओ, रात हो चुकी है और खामोश तो आपने खुद होना है। अगर आप कहते हो तो मैं भी खामोश हो जाती हूँ, लेकिन जल्दी से मुझे ये बता लेने दो। वैसे मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद समझदार हैं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि गीतों में क्या कॉमन है। आफताब गिल जी आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए बेहद शुक्रिया। और विनी विनोद जी और वरुण जी आपका कहना है कि ये आपका बहुत फेवरेट गीत है, तो हम आप ही के नाम करते हैं। और आज गीतों में आप कॉमन रहा। काशिफ जी को भी गीत बहुत अच्छा लगा, तो काशिफ जी आप भी ले लो। विजय जी आपके भी नाम गया, सभी के नाम गया भाई। और लीजिए अब आप पर ही एक गीत सुनते और सुनवाते हुए हम जाएंगे खबरों की जानिब। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं आपका इंतजार करूंगी।
1: लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर, दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: वन एंड ओनली शैलेंद्र सिंह जी, बॉबी। कल की, आज की और आने वाले कल की हिट मूवी 1973 की। मैं शायर तो नहीं, शायर तो जनाब चौधरी फरीद अहमद साहब भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन शायरी पसंद फरमाने वालों को पसंद आते हैं वो इंतखाब आज जो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो चौधरी फरीद अहमद साहब ने भिजवाया है कि हम अहले दिल की इतनी ज़रूरत है और बस, हम अहले दिल की इतनी ज़रूरत है और बस, जिंदा हैं और तुझसे मोहब्बत है और बस। तुझसे खुदा ना खास्ता नफरत करूँगा मैं, तुझसे मुझे उलझने की आदत है और बस। ए शख्स तेरे साथ हैं सारे मुआमलात, ऐसा नहीं कि तुझसे मोहब्बत है और बस।
1: Reminisce those classics on Like a Gold.
0: हाँ जी, आगे मतलब मैं, अच्छा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: कम से कम ये कंप्यूटर तो मेरे इशारों पे चलता है। लीजिए, आपको बता दें कि £1 in British sterling can get you 126.6 Indian rupees today. Don't forget to exchange in branch, online या फिर SBI Yono mobile app के जरिए। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और लीजिए भाई, अब आपको चंद अल्फाज में बता देती हूँ जिनकी रोशनी में आप बूझेंगे कि ये कौन सा गीत है। और याद रहे कि इस आवर में पंजाबी तड़का भी शामिल रहेगा, और पंजाबी तड़के का एक बहुत ही खूबसूरत गीत का जिक्र किया था भट्ट साहब ने। भट्ट साहब ने वैसे अभी तक हाजिरी नहीं लगवाई, पता नहीं कहाँ बिजी हैं। तो भट्ट साहब, आप पहले हाजिरी लगवाएं, तभी मैं आपकी पसंद का गीत शामिल करूँगी। लीजिए पहले तो ये अल्फाज, और ये अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि दर्द व गम है, आंसू हमारे बहते हैं, दर्द व गम है, आंसू हमारे बहते हैं।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: BT believes brilliant things deserve protection. Beekeepers across the UK work hard every day to protect their hives from invasive predators. Just like BT protects UK homes from over 10 million online threats every month, keeping you and your family safe from scammers. Advanced threat protection as standard, only from the UK's best broadband. BT, protecting brilliant things. Based on BT full fibre. Verify at bt.com/claims.
1: This is Anissa Nasir with The Big Show. This part of the show is brought to you by Anupama, every day at 7:30 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Amita ji ka bahut favorite geet hai to Amita ji ke naam karte hain. Pankh hote to udaati re. रसिया ओ जालिमा तुझे दिल का दाग दिखलाती रे. और अभी अभी मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि आज दिल का आलमी दिन है. हेलो कर लो गल, बस ये कसर रहती थी भाइयों. और उस पर काफ़ी सारे अशार भी इधर उधर हर तरफ से, मतलब जो है ना वो बोछार हो रही है. जैसे कि दिल के मैदान में आँखों से उतारे गए थे, दिल के मैदान में आँखों से उतारे गए थे हम, लड़ाई में नहीं इश्क में मारे गए थे. और उसके साथ साथ एक और, पुकारता है तुझे रोज मेरा दिल मुझ में, पुकारता है तुझे रोज मेरा दिल मुझ में, मैं आरजी हूँ मगर तू है मुस्तकिल मुझ में. क्या प्यारा शेर है, बहुत ही प्यारा शेर है. कहते हैं लोग सीने से लगा लेते हैं ये सोचे बगैर, लोग सीने से लगा लेते हैं ये सोचे बगैर, उम्र लगती है लगाते हुए दिल दिल की तरफ. वाह क्या बात है. तो भाई दिल का आलमी दिन, इंटरनेशनल दिल डे, आपको मुबारक, सभी को मुबारक. और तारिक साहब, मुझे नहीं लगता कि आपको पता चला, इस बात का एहसास हुआ कि आप लास्ट आवर में राजा ऑफ द आवर थे. आपकी तरफ से कोई खुशी या मतलब एक्साइटमेंट का कोई इजहार ही नहीं हुआ. आप सुन रहे हैं ना कि वो नालायक शागिर्दों की तरह, सॉरी आपको नहीं मैं कह रही, लेकिन मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि हाजिरी लगवाई और खिसकल लजीना, मतलब खिसक गए मेरा मतलब है. तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा खुशी का इजहार कर दीजिए कि आप पर राजा बने थे. तो उसी सिलसिले में कोई एक आदमी तो मुस्कुराता हुआ इमोजी भिजवा दें. लीजिए मैं उन अल्फाज को एक दफ़ा फिर से दोहराने जा रही हूँ जिसकी रोशनी में आपने गीत को बूझना है. अभी तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही जवाब मुझ तक पहुँचे हैं. गुल जी आपने तो गुल खिला दिया, निम्मी जी, विजय जी, आप तीनों के जवाब गलत हैं. विजय जी आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, कहते लो जी आज तो बहुत ही ईजी है, कर लें बात फिर, ये ईजी है, गलत हो गया आपका जवाब. हाँ तो वो अल्फाज कुछ इस तरह से कि दर्द व गम आंसू हमारे बहते हैं. और ये वो गीत हरगिज़ नहीं है जो गुल जी, निमी जी और विजय जी ने बताया है. राइट, जनाब मोहम्मद जहीर खान साहब ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान कराची से. भई और तो और बकरियों का हाल तो भी मैं खुद पूछती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फिक्र होने लगती है उनकी. और जहीर साहब आपका भी मैसेज ना आए तो कल आप थोड़े से उदास थे, इसलिए मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं आपको, वरना मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कह के जाती, लेकिन मन कर नहीं होता है. किसी दिन मूड ऐसा होता है, इंसान बगैर किसी वजह के खुश भी हो जाता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, और बगैर किसी वजह के उदास भी हो जाती हूँ, और कभी कोई वजह भी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो वजह आप शेयर करेंगे मेरे साथ? मैं रेडियो भी नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी सच्ची. अच्छा, बकरियों के हालचाल के साथ साथ उनका डिनर भी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, क्या खिलाया क्या पिलाया. शुक्र है कि उनका डिनर सुन के मेरे मुंह में पानी नहीं आया.
1: ये है
0: लाइका गोल्ड. हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ हॉल ट्रैवल.
2: साउथ हॉल ट्रैवल जो कि जाने जाते हैं फॉर इट्स कंपेटिटिव हॉलिडे डील्स टू दुबई. कांटेक्ट कीजिएगा साउथ हॉल ट्रैवल को आज ही ऑन 0208-574-8410. साउथ हॉल ट्रैवल इज इट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: We're brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Anissa Nasir on Leica Gold Greater London. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7am Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
2: किसके नाम करूं, किसके नाम करूं, ये बहुत ही प्यारा संगीत. आपके? चलो, हो गया.

0: एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
1: और आपको बता देते हैं इस नेक्स्ट एपिसोड के बारे में जो आप देख सकते हैं, बाकी सारी वाली प्रीवियस वाली भी जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट जो है अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल और अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। और ख़ास तौर पर ये एपिसोड जो है हम सबको बहुत बहुत एक्साइटमेंट थी इसकी। राज बैदन टॉक्स टू रूबी राजा एंड डॉनी ब्रास्को अबाउट स्टेपिंग इन टू द रोल ऑफ CEO वन ऑफ द ब्रिटेन्स लार्जेस्ट एशियन रेडियो नेटवर्क्स लाइका रेडियो नेटवर्क, और उनकी जर्नी बिहाइंड द टाइटल तो जरूर देखिएगा।
0: लाइका एक्स्ट्रा अनीसा नासिर विद द बिग शो वीकनाइट्स फ्रॉम 7 PM TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
2: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट TravelHubWorld.com।
3: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जैमिन फूड्स का वाइब चेक।
5: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जैमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
4: जैमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
6: From South Old Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
7: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
8: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
9: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sona Tours on 0208-951-0111.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.

0: प्यार की सोच के थोड़ा ही ना किया जाता है। हौसले इसलिए बुनियाद से हिल जाते हैं, हौसले इसलिए बुनियाद से हिल जाते हैं, इश्क की जंग में बाजू नहीं दिल जाते हैं। और लीजिए भी आपको एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें, कैच द ब्रांड न्यू गेम शो है, इंडिया का टॉप 1% होस्ट कर रहे हैं जिसे अनिल कपूर जी, एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस और जियो हॉट स्टार पर दिखाया जाता है। डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जियो हॉट स्टार ऐप, जो कि ऑल्सो अवेलेबल है ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप।
1: ये है लाइका गोल्ड। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: पहले जरा रेट चेक कर लें कि आज 1 ब्रिटिश पाउंड आज दिला सकते हैं आपको 366.5 पाकिस्तानी रुपीज, 126.8 इंडियन रुपीज, 85.1 अफगानी, 162.7 बांग्लादेशी टका एंड 1.3 US डॉलर।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £101.39 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: वैसे तो प्रोग्राम का एक एक लम्हा मैं आपके साथ जीती हूँ, इंजॉय करती हूँ, खुश होती हूँ, गीत सुनवा कर भी, आपके मैसेजेस पा कर भी, और ज़्यादातर मज़ा मुझे आता है जब आप छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें मेरे साथ शेयर करते हैं। जैसे कि दिलीप सरोज जी बता रहे हैं कि मैं साथ साथ खाना भी बना रहा हूँ, प्रोग्राम भी सुन रहा हूँ, और आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। भाई ये बड़ा जुल्म है, मिसेज दिलीप सरोज जी आज भी खाना उनसे बनवा रहे हो, हाँ मतलब आज तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए था थोड़ा सा, नहीं? या शायद ज़्यादा मोहब्बत जताने के लिए दिलीप जी खुद ही बनाना शुरू हो गए हैं खाना। वैसे ऐसे ही एक कपल था, तो उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो बेगम ने बड़ी लाड से अपने हस्बैंड से कहा, क्या ख्याल है आज ये जो सेन में मुर्गी फिर रही है इसको ज़िबाना कर लूँ और आपको पका कर खिलाऊँ। तो शौहर बेचारे बड़े उकताए बैठे थे, कहने लगे नहीं उस बेचारी का क्या कसूर है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा आपके सिलसिले में, मुझे पूरा यकीन है। और स्वीटी कालरा जी कह रही हैं आपकी नज़रों ने समझा, उफ मैंने अपनी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी पर ये गीत उनके लिए गाया था, यानी कि राजेंद्र सिंह कालरा जी के लिए, नाम नहीं लेती। उस पर भी एक जोक है लेकिन टाइम नहीं है।
1: YCA. This is Laika. Punjabi Tadka with Anisa.
0: और ये गीत सुनना चाहता था आज जनाब शहजाद भट्ट साहब ने। भट्ट साहब आपकी पसंद, आपके नाम, बल्कि उन सभी के नाम जिन्हें पंजाबी तड़का बहुत पसंद है, खास तौर पर मलिका तरन्नुम नूरजहां जी की आवाज। Enjoy. Yeah, me too, me too.

मंजी किथे डावा, ये था फिल्म का नाम और इस गीत को सुनकर काफ़ी लोग नेड़े नेड़े हो गए हैं। बेहद शुक्रिया जीशान जी, आपको भी ऐसे गीत बहुत अच्छे लगते हैं, आपके नाम

0: रेगुलर हमारा साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। सोबत खान जी, मुझे आपका नाम नहीं याद आ रहा था, मैं लेना चाह रही थी कि अभी तक सोबत खान जी का मैसेज नहीं आया। ऐसे गीत उनको भी बहुत भाते हैं, तो इन्जॉय कीजिए गीतों को। और आपको बता दूं कि उल्टा पुल्टा अब कुछ ही देर में मैं सुनवाने जा रही हूँ। उल्लास जी आप हैं रानी ऑफ द आवर, अयूब चौहान जी आप हैं राजा ऑफ द आवर, जयश्री जी, सईदा जी, फरजाना जी, मीनाक्षी ब्रह्मभट जी और नरेन जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और गुल जी, निमी जी, विजय जी, संध्या जी, आपका भी नाम शामिल हो गया है गलत जवाब भिजवाने वालों में। गीता हर्षद जोशी जी आपका भी, और रीटा जी आपका भी।
1: अनीसा नासिर लाइव अक्रॉस ग्रेटर लंदन विद द बिग शो। This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
1: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
5: फोन 0208574 8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
1: Anisa Nasir with the big show, weeknights from 7 PM.

ये था हमारा आज का उल्टा पुल्टा। कुछ लोगों ने सीधा किया, कुछ लोगों ने कोशिशें की, तो आप सभी का बेहद शुक्रिया। मैं इस खुलूस के सदके ए सामईन सुनने वाले श्रोताज, मैं इस खुलूस के सदके ए सामईन मगर जो हाल बोल ना पाए, किसे सुनाते हैं, किसे बताते हैं आंखों की सुर्खियों का सबब, बहुत उदासी में किसको गले लगाते हैं। और सर पे आंखों पे लगाने वाले मैसेजेस हैं आप सबके, बेहद शुक्रिया। भारती जी, हमारी दीदी अडवाणी, हमेशा साथ निभाती हैं, बेहद शुक्रिया। ये गीत आपके नाम भी करती हूँ। और लीजिए, और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही कहा संध्या जी, होता है ऐसे, आप कोशिश करते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। अब भी अगर आप भी आज कोई खुशी मना रहे हैं, कोई वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह वगैरह वगैरह, तो अगला गीत आपके भी नाम करते हैं, क्योंकि फरमाइशी सिलसिला अब भी से शुरू कर रही हूँ। बहुत सारी फरमाइशें हैं जो कि एक आवर में पूरा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लिहाजा दिलीप सरोज जी आपके लिए और आपकी मिसेस के लिए जो गीत आपने मांगा है वो सुनते और सुनवाते हुए हम न्यूज़ की जाने बढ़ेंगे। और न्यूज़ के उस पार सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, सरे अनीसा खम होगा जो मिजाज लिसनर्स में आए। और ऑलरेडी आप लोग मुझ तक अपनी फरमाइशें भिजवा चुके हैं, सो चिल करें, रिलैक्स करें, चाय शाय बनाएं, मज़े से कॉफ़ी जो भी आपको अच्छा लगे लेके अब बैठ जाएं आराम से सुकून से और इन्जॉय करें उन गीतों को। और मैं हमेशा कहती हूँ मेरे एक लिसनर की पसंद मेरे सभी लिसनर्स की पसंद बन जाती है, क्योंकि हमारे दिलों के बीच मोटरवे जो है लाइक अ गोल की नशियात 24 घंटे सातों दिन आपके साथ। मैं हूँ अनीसा नासे, मंडे टू फ्राइडे शाम 7 से 10 के दरमियान आपकी मेज़बान। और वादा, जब तक रब सोने ने चाहा, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। करें करें, आप भी वादा करें और कहें आमीन। तथास्तु ये भी कहते हैं ना, मे बी आई एम रॉन्ग, तो अगर मैं गलत हूं तो माफ फरमाइएगा। दिलीप सरोज जी एंड मिसेस दिलीप सरोज जी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, मेनी मेनी मेनी मोर टू कम इंशाल्लाह।

0: मिट्टी का हेर फेर है कोई पता नहीं, मिट्टी का हेर फेर है कोई पता नहीं, हम और कितनी देर हैं कोई पता नहीं। दोनों तरफ महीब उदासी की धुंध है, हम शाम हैं सवेर हैं कोई पता नहीं। मरने के डर से दूसरों को मारते हुए बुजदिल हैं या दलेर हैं कोई पता नहीं। चकरा के अपने आप में गुजरी है जिंदगी, हम किस गली का घेर हैं कोई पता नहीं। What a beautiful choice, बल्कि choices कहना चाहिए। दीदी अडवाणी यानी भारती जी की पसंद था पहला गीत, और दूसरा गीत रमेश जी आपने सुनना चाहा था, बेहद शुक्रिया ऐसा प्यारा सा गीत फरमाइश करने के लिए। और भी जितने गीत हैं एक से बढ़कर एक गीत है, इसलिए उन्हें मिस मत कीजिएगा। उजले तन पे मान किया और मन की मैल न धोई, हम कभी इन बातों पर गौर करते हैं? करना तो चाहिए, क्या ख्याल है? और कंप्यूटर जी आपका क्या ख्याल है?
1: Alisa Nasir, live across Greater London with The Big Show. With competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today can get you up to 126.6 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: Kaifi Azmi ji, jaisa ki aap jante hain, hamare artists of the week hain aur unke likhe geeton mein se कुछ चुनना पूछे मत, बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन आज जो गीत मैंने चुना है ना, आप यकीन करें उससे देख कर जान कर सैंडी शाह जी के मुंह में पानी भराया था। उफ, मेरे से कैसे मिस हो गया। बस जी हो जाता है वैसे ही जैसे हमसे मिस हो जाते हैं और आप सुनवाते हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे गीत, वैसे ही आज बदले का टाइम है।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: BT believes brilliant things deserve protection. Beekeepers across the UK work hard every day to protect their hives from invasive predators. Just like BT protects UK homes from over 10 million online threats every month, keeping you and your family safe from scammers. Advanced threat protection as standard, only from the UK's best broadband. BT, protecting brilliant things. Based on BT full fibre. Verify at bt.com/claims.
1: This is Anisa Nasir with The Big Show. This part of the show is brought to you by Ohamnava Tum Dena Saath Mera, Monday to Friday at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.
3: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11, 11.
4: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
5: Danu 11, 11. Danu Properties.
6: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
7: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
6: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
7: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk. Okay.
6: Cashback remortgages. Your mortgage should work for you.
8: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
8: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु गुरु,
10: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
9: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
10: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
11: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र शीघ्र।
10: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
12: To book call 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
1: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
12: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: कोमल जोया का कहना है कि इश्क अगर हाथ छुड़ाए तो छुड़ाने देना, इश्क अगर हाथ छुड़ाए तो छुड़ाने देना, कारे वहशत में मगर आंच ना आने देना। जिसने दामन मेरा दुख दर्द से भर डाला है, जिसने दामन मेरा दुख दर्द से भर डाला है, मेरे मौला उसे खुशियों के खजाने देना। इज्जत नफ्स से बढ़कर तो कोई चीज नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से, इज्जत नफ्स से बढ़कर तो कोई चीज नहीं, जो तुम्हें छोड़ के जाए उसे जाने देना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

अकीदत के रिश्तों में बददुआ का तसव्वुर नहीं होता। जहां बहुत ज्यादा मोहब्बत, एहतराम, अकीदत हो, वहां पर बददुआ का तसव्वुर नहीं होता। जो दस्तरस से निकल गया, खुदा उसे खुश रखे।

0: ख्वाब आंखों से जुबान से हर कहानी ले गया, ख्वाब आंखों से जुबान से हर कहानी ले गया, मुख्तसर ये है वो मेरी जिंदगानी ले गया। फूल से मौसम की बरसातें, हवाओं की महक, अब के मौसम की वो सब शामें सुहानी ले गए।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is Like a Gold.
0: और Like a Gold पर हम आपको बताते हैं आप अपनी शामें कैसे सुहानी बना सकते हैं। और भाई वो हमारा साथ तो है सो है ही, उसके साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स जो आते रहते हैं। पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली जी फ्राइडे 16th अक्टूबर एट क्रिस्टल ग्रैंड स्लाओ में परफॉर्म कर रहे हैं और संडे 18th अक्टूबर एट ICC बर्मिंघम में।
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7pm with the best tunes, mind games and a bit of Ye Ya Wo only for Like a Gold.
1: This is Anisa Nasir with The Big Show.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट travelhubworld.com।
8: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Search is changing.
11: Customers aren't just using Google anymore.
10: They're asking AI.
11: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
10: One business, one recommendation.
11: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
10: Will your business be the answer?
11: Or the one that got left behind?
10: The future of search has already started.
11: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
10: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. London's biggest classics all day. This is Like a Gold.

0: फिल्म परिस्तान से लिया था हमने ये गीत 1968 की फिल्म गाने वाली आवाज वन एंड ओनली नसीम बेगम जी की। और आज नसीम बेगम जी की आवाज़ में आपको एक और भी गीत मैं सुनवाऊंगी क्योंकि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। 29 सितंबर 1971 में अपने ज़माने की मकबूल तरीन गुलूकारा और 4-5 बार बेहतरीन फीमेल प्लेबैक सिंगर का निगार अवार्ड हासिल करने वाली मादरे वतन का नगमा ए राहे हक के शहीदो करतार सिंह का नगमा कौन भूल सकता है, देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया। एक्चुअली ये गीत मैं आपको डेफिनेटली सुनाऊंगी। आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था। खुदावंद करीम उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। और आज हम इस प्यारी सी फनकारा को याद करेंगे उन्हीं का गाया हुआ एक और गीत सुनवा कर।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: One British pound aaj aapko dila sakta hai 126.8 Indian rupees, 85.2 Afghan Afghani, 366.5 Pakistani rupees, 162.7 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LAIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £101.56 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: Leica Gold.
5: Non-stop classics.
6: Classics.
5: Leica Gold.
7: From Lollywood, with love. With Anissa.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
1: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: सारू सारू
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई,
1: फिर
0: फुर फुर फुर फुर बताओ नहीं बड़ी क्या बात हुई। कह दो
1: कह दो
0: कह दो
1: कह दो

0: आई।
1: रघुकुल रीत चला चती चल, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचाना ना जाई,
2: जाई जाई
1: बन चले।

0: ये गुड़म।
1: अरे अरे भालू आया?
2: नहीं आया।
1: तो फिर सो जाओ।
3: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।